अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सो है हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वडपागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस महला पंजवा शंत कर चौथा।

की कान जमानी असर थिया अमृत पिया रहया आवन जानी सो कर लदा सहिस मदा हर का नाम आधारा कहो नानक सुख माणे रलिया गुरपुरे कहो नमस्कारा। सुन सज्जन जी मैंडड़े मीता राम गुरमंत्र शब्द सहदी ताराम सच शब्द ते आया मंगल गाया चूके मनो अंदेसा सो प्रभ पाया कत न जाया सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाणा सच्चा माणा प्रभ हर तन सहजे दीता कहो नानक ते जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता। ताओ पाणा ता तृप्तिया गाए राम मन थिया ठंडा सब तृष्ण बुझाए राम मन थिया ठंडा चूकी डंजा पाया बहुत खजाना सिख सेवक सब पुंचन लगे हाँ सतगुर कै कुरबाना निरपो पए खसम रंग राते जमकी त्रास बुझाए नानक दास सदा संग सेवक तेरी भगत करो लिवलाए। पूरी आसा जी मनसा मेरे राम मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे राम सब गुण तेरे ठाकुर मेरे कित मुक्त दसा लाही गुण अवगुण मेरा किश ना बिचारिया बख्शली आखिन माही। नौ निद पाई वजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वार कर पाया मेरे लाथे जी सगल विसूरे। सलोक क्या सुने दे कूड़ वंजन पवन चुलारिया नानक सुनियर ते प्रवान जो सुने दे सच तनी संत। तिन कोल कुमाई जिन प्रभ सरवनी सुनिया राम से सहे सुहेले जिन हर हर रसना पणिया राम से सहे सुहेले गुणे अमोले जगत उदारने आए पै बोहिथ सागर प्रभ चरणा केते पार लंगाए। जिन कहो कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिस कोल कुमाई जिन प्रभ सरवणी सुनिया। सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मुँह कणी नानक से अखड़िया बयान जिनी डसन दो मां पिरी संत। जिनी हर प्रभ डिठा तिन कुरबाने राम से साची दरगै पाने राम ठाकुर माने से प्रधाने हर से ती रंग राते हर रस अगाए सही समाए कट कट रमैया जाते सही सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सतगुर बाणे। सलोक देह अंधारी अंध सुनी नावे हुनिया नानक सफल जनम।

हर मने मीठा प्रभु तुठा अम्यो गुठा सुख पय दुख नाश परम विनाश तंते जप जगदीश ईसै जय जय मोह रहत बेकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तन खनिए मन्या जिन कट मेरा हर प्रभु ठा सलोक जो लोड़ींदे राम सेवक सही कंडिया नानक जाने सत साई संतना बाहरा शंत मिल जल जलै खटाना राम संग ज्योति ज्योत मिलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आपे आपे जानी है तह सुन सहि समाध लागी एक एक वखाणी है आप भुगता आप मुगता आप आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल जलै खटाना वडहंस महला पंजवा प्रभ करण कारण समर्था राम रख जगत सगल दे हथा राम समर्थ सरना जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हाँ कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता वर्ण चिहन न जाए लखिया कथन ते अकथा बिनवंत नानक सुनो बिनती प्रभ करण कारण समर्था एह जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द भ्रम हरता राम भ्रम दुख दर्द निवार खिन मैं रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरने आवै गुण निधान पावै सो बहुत जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पैर हर त्याईय राम मन इच्छियाड़ा फल पाईय राम मन इच्छ पाईय प्रभ त्याईय मिटै जमके त्रासा गोविंद गाया सा संगाया पई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाई है बिरमंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याई है दर वाजे अनहद वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगमा गोचरी उच्चा गुण बेअंत किश कहण ना जाई कोय ना सकै पहुचा आप यो पाए आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुखनाम भगती दर वजे अनहद वाजे राग वढ़ंस महला पहला घर पंजवा अलाहणिया एको अंकार सतगुर प्रसाद तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जगतंद लाया मोहलत पुन्नी पाई परी जानी अड़ा कत चलाया जानी कत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर सबाए काया हंस थिया वे छोड़ा जांदन पुन्ने मेरी माए जिहा लिखिया तिहा पाया जिहा प्रभु कमाया तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जगत अंदर लाया साहिब सिमरो मेरे पाई हो सबना हो पयाना एथे तंदा कूड़ा चार दिहाया गै सर पर जाना आगै सर पर जाना जो मेहमाना काहे गर्भ कीजै जित सेवे दरगै सुख पाई है नाम तसै का लीजै आगै हुक्म न चलै मूले सिर सिर क्या विहाना साहिब सिमरो मेरे पाई हो सब ना हो पयाना जो तिस पावै समर्थ सोथी है हीलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सृजनहारो साचा सृजन हारो अलख्या पारो ताका अंत ना पाया आया तिनका सबल भया है एक मन जिनी तिहाया टाहे टाहे ओ सारे आपे हुक्म सवारण हारो ज्योत भावै समर्थ सोथी है हिलड़ा ओ संसारो नानक रुना बाबा जानिए जे रोवै लाए प्यारो वाले वे कारण बाबा रोई है रोवन सगल बेकारो रोवन सगल बेकारो गाफल संसारो माया कारण रोवै चंगा मंदा के सूजै नाही ओ तन एवै खोवै

आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लय हां रोवे बिरहा तन का अपना साहेब समाले हां साहेब समाल है पंथ निहाल है असा पे उठे जाना जिसका किया तिन्ही लिया हुआ तसे का पहना जो तिन कर पाया सोवा गे आया असी के हुक्म करेहा आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लय हां मरण न मंदा लोका आखिए जे मर जाना ऐसा कोए सेवो साहेब समर्थ अपना पंथ सुहेला आ गए होए पंथ सुहेले जावो ता फल पावो आ गए मिले वडाई भेटे स्यों जावो।

रोवै कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरै ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ आरे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप पाए ओनो।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत उपाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यारो।

सेवक सेव करे सब तेरी, जिन शब्द साध आया गुर कृपा ते निर्मल होवा, जिन विचों आप गवाया आन देन गुण गावे नित साचे, गुर कै शब्द सुहाया मेरे ठाकुर हम बारक शरण तुम्हारी, एको सच्चा सच तू केवल आ मुरारी, रहाओ जागत रहे इतनी प्रपाया, शब्दे हों मैं मारी, गृह मह सदा हर जन उदासी, ज्ञान तत् बिचारी, सतगुर सेव सदा सुख पाया, हर राख्या उर तारी, एहो मनुआ दे जस्तावंदा, दूजे पाए खुआया, मनमुख मुगद हर नाम ना चेतै, बिरथा जन्म गवाया, सतगुर भेटे ता ना हो पाए, हो मैं मोह चुकाया, हर जन साचे साच कमावै, गुर कै शब्द विचारी, आपे मिल ले प्रभ साचे, साच रखिया उर धारी, नानक नाम गत मत पाई, एहा रास हमारी, सोरठ महला तीजा, भगत खजाना भगतन कौ दिया, नाओ हर तन सच सोए, अखुट नाम कदे निखुटे नाही, अखुट नाम तन कदे निखुटे नाही, किने ना कीमत होए, नाम तन मुख उजले होए, हर पाया सच सोए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्द जग पुलदा फिरदा, दरगह मिले इस जाए, रहाओ इस ते ही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लो मोहंकारा, अमृत लूटै मनमुख नहीं बूझै, कोई ना सुने पुकारा, अंधा जगत अंध वरतारा, वाजगुरु गोबारा, हाँ मैं मेरा कर कर विगुते, केहो चले ना चल दिया नाल, गुरमुख होवै सो नाम ते आवै, सदा हर नाम समाल, सच्ची बाणी हर गुण गावै, नदरी नगर निहाल, सतगुर ज्ञान सदा घट चरण, अमर सिर बाद साहा, अन दिन भगत करै दिन राती, राम नाम सच लाहा, नानक राम नाम निस्तारा, शब्द रते हर पाहा, सोरठ महला तीजा,

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा। हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले भाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया। जम्मै वारू वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुक्त गुबारा। आपे कर वेखे मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटे भाई करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा। गुरमुख भगत करे प्रभ पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करे आप राखे जो तेरे मन पाणे। तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ। दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझै विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्स नखै बिदारे। प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सकौ बहु भला कर जाणै मनमुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई। राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए। सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हों लागा तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाणी विच आवै अपने पाणे जो चले पाई विछड़ चोटां खावै। बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ। एहो कुटुंब सब जी के

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ अवतराया कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे गुरपूरा है राखी सरण सचे की ताकी परमेसर आप हो रखवाला सांत सहज सुखन मैं उपजे मन हो

पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सद जी संग रखवाला, हर दिन रहन कीर्तन गाइए, बहुना जोनी पाइए, जिस देवै पुरख बिदाता, हर रस्त नहीं जाता, जम कंकर नेड़ ना आया, सुख नानक सरणी पाया। सोरठ महला पंजवां, गुरपुरै कीती पूरी, प्रभरव रहया परपूरी, खेम कुशल पया इस नाना।

मिल साधु दुर्मत होए पद तपनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभु अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर दे सिदायो हुन नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो।

जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै, हरियंत्र जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाई है। कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाई है, अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले संठे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा, जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहण न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांछो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहूं आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी पै कृपाला, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा, जन नानक एक त्याया, सर्व फला पुन पाया। सोरठ महला पंजवां, कर तीजा दुपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर इसनाना, गुरपुरै कीने दाना, सब कुशल खे

नानक नाम ते आया आद पुरख प्रपाया। सोरठ महला पंजवां जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दै वसाया। सुख सागर गुर पाया ता सही सा सगल मिटाया। हर के नाम की वड्याई आठ पहर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ। प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी। सोरठ महला पंजवा आगे सुख गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया। सर्बन दान सुख पाया गुरे अपना हृदय ते आया अपने सतगुर की वड्याई। मन इच्छे फल पाया।

प्रभ अपने वर दीने सगल जीव असकीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुरे आप गवाई सिख संत सब सर से होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संता देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवा सोई कराए जोत पावे मुहे सियाणप कछु ना आवै हम बारग तौ शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ। जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया। प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ। परा पुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै। नानक दास सच्चे गुण गावै सोरठ महला पंजवा गुरमिल प्रभु चितारिया कार्ज सब सवारिया मंदा को ना लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहोड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवां, ऐथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुपाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सास सास संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ शरणाई, सोरठ महला पंजवां, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावे, बिरथी आस न जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पद दाता, सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत तां का मन लीना, पार ब्रह्मन पावे, आठ पहर हर का जस रमणा, बखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करतै, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपे आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवां, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगे को ना टिके बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्श अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरा आरा दे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवां, भूखे खावतला भूखे खावतला जना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज कहो क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवां, सुख सांद कर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवां, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय और तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवां,
ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਜਿਸਨੋਂ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰਾ, ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ, ਦਾਸ ਕਉ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਫਿਰ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ, ਜਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੋ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਉ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ, ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸ ਚਾਖੈ।

सुनी पुकार समर्थ स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पहारे उतारे।

आओ बैठ आदर सब थाई ऊं न कतहूं बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यों पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही

दारामीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा। मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ। मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माए निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा। मन रे प्रभ की शरण विचारो जै सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ। अटल भयो त्रुजा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा। अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरें पारा।

करई कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै और धर्म ता कै समनाहन एह बिद बेद बतावै दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिख्यान कौ तावत केह बिद रुकौताहे रहाओ वेद पुराण सिमरत के मत सुनो निमख नाहिए बसावै पर धन पर धारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावै मद माया कै पयो बावरो सूजित न कछ ज्ञाना कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी सोरठ महला नावा हरे नर एह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पज ले ना मुरार कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागेओ दुख में संग ना होई रहाओ दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे जब ही निरतन देखियो नरकओ संग छाड़ सब भागे

मेरे प्रभ सालाहन से भले प्यारे शब्द रते रंग होए, तिसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए, पथ प्रवाना।

बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यों बैरागिए पाई दर कर साचिया पूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिलिया सुख पाया पाई जूका मनो गुमान जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बुढ़े तेहे गुर बिन अलख ना लखिए पाई जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई जय पावे तें दे बैयर बोले मिठली पाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाए सब को आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईंधन अदक सकेलिए पाई पाव करन चक पाए खिर पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो हरनाक समार पजाया गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो मनमुख परम भुलाया हर जी एह तेरी वडियाई भगता की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाओ भगता नु जम जोहे ना साकै काल ना नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई अरिद सिद्ध सब भगता चरणी लागी गुर कै सह सुबाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवई अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हृदय शब्द ना भेदियो हर नाम ना लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मनमुख फीका या लाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख बिदाता हों मैं मार मन सामने समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवार नहारा ओना की रीस करे सो विगुच्चे।

अटिया प्यारे चेतन आवै मूल, जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़। बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल, जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल। साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए, जिस मिले हर विसरै प्यारे सो मुह कल उठ जाए। मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए, जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए। संजम सहस स्याण पा प्यारे एक न चली नाल, जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल। होंदी वसना जातिया प्यारे कूण न चली नाल, सतगुरु जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल। सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे, अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे। दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे, जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे। समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे, भगता तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे, जे अंतर जामी जान। हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान, सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान। सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंग मसादे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहं बुद्ध बादे। प्यारे इन बिद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका। रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही, तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही। मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए, मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए। कनक कामनी हैवर गैवर बहु बिद दान दा तारा, अन बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता, हाहो करत बंधन मैं परया न मिलिए एह जुगता। जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहया, वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यों संग न गया। राजलीला राजन की रचना करया हुक्मिया फारा, सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा। हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कै करमा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। तेरो सेवक एह रंग माता पयो कृपाल, दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता। रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी, जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन, जीबै सच्चा सोए। ससरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग, पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग। सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग, देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस। जे पिर पावै नानका करम मणि सब सच, महला चौथा सोरठ।

गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले, जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सृजन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया। दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया। हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया, श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए। एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे परवान है। मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिया, जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है।

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरयो ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तन दीना, राग राग नी डिंब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी, कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिरया और ना देखा,

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतऊ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुदारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंतन बेरा तेरे जी पहली जय रहाओ, छिन छिन तन छीजै जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी ओ ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, किस जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाउ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जवाले, खाट मांग

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गाठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

खरा खरा आखे सब कोय रहाओ, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया गाए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। सो जोगी जो जुगत पछाणे, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरह सगले कुल तारे, दान संबंध सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे। पढ़िया बूझे सो प्रवान, जिस सिर दरगे का निशान। तनासरी महला पहला, कर तीजा एको अंकार, सतगुर प्रसाद। काल नाही जोग नाही, नाही सत का टब, था निष्ठ जग प्रष्ट होए, डूबता इव जग। कल मैं राम नाम सार, अखी ता मिटै नाग पकड़े, ठगन को संसार रहाओ। आठ सेती नाक पकड़े, सूते तन लो, मगर पाछा कछ ना सूझे, एहो पद म्यालो। खत्रियां ता धर्म छोड़िया, मलेश पाखिया गही, सिहट सब एक वर्ण होई, धर्म की घत रही। अष्ट साज साज पुराण सोदे, करे वेद अभ्यास, बिना महर के मुक्त नाही, कह नानक दास। तनासरी महला पहला, आरती एको अंकार, सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे। सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए, पवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो, सहस मूर्त नना एक तोही, सहस पद बेमलो नानेक पद गंद बिन। सहस तव गंध विचलत मोही, समय जोत जोत है सोए, तिसके चानन समय चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए। जोत पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभत मानो, अन दिन मोह आही प्यासा, कृपा जल दे।

हर हर अगमया गाद बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख भरम पौ भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमति अंतर जागी। हर कह नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलक बुलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वट पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह ना सके प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुरबानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब किलविख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उच्चे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे अपन पाली। गुर सखमी चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानाओ। हर हर कथा निराली रहाओ। हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवो बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो वाज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम सा जना पगराली। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पय हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह न सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सर्वर अत अगाह हम लह न सके अंत माती। तू पर परे अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम पाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपयो तरह तरा की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते का की रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर
लग संगत साध जना की, दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर, तुम आपे आप आपा की, जन नानक कहो प्रभ कृपा की, जय कर दस दास दसा की। तनासरी महला चौथा, कर पंजवा दोपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उर तार विचार, मोरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने, अदृष्ट गोचर परंपर स्वामी, गुरपुरे प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरी सतसंग पे, हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नाम शे खट बोले मुख आगर, मेरा हर प्रभ इवना पतीने। जन नानक हरे हृदय सत्याव, इं हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी महला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा, सतगुर एव हर हर नाम ते आई। हर दर गै पावै, फिर जन्म ना आवै, हर हर हर ज्योत समाई। जप मन नाम हरी, होहे सर्व सुखी, हर जस ऊच सबना ते ऊपर, हर हर हर सेव छडाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी, गुर भगत हर दीनी, तब हर स्यो प्रीत बने आई। बहु चिंत विसारी, हर नाम ओर तारी, नानक हर पय है सखाई। तनासरी महला चौथा, हर पढ़ हर लिख, हर जप हर गाओ, हर भोजन पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए, हर होए संतुष्ट, एव पण हर नाम मोरारी। मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा अना

हर हर नाम जपयो गत ही पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी। तनाश्री महला चौथा, चौरासी सिद्ध बुत, तीस कोट मुन जानो, सब चाहे हर जियो तेरो नाओ। गुर प्रसाद को विरला पावै, जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ। जप मन रामै नाम, हर जसिउ तुम काम। जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी, हम तनकै सद बलिहारै जाओ रहाओ। शरणांगत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हाँ पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजै, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवै। सब गावे हर हरि उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तनका हर थाए पावै। जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। बोलो पाई हर कीर्त, हर पव जल तीर्थ। हर दर तिन की उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जनो जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर। जा कै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीअड़े। ता सर्व सुख पाव है मेरे मना, जप मानो सतनाम सदा सतनाम। हालत पलत मुखी उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी, वडपागी हर जपना। जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरना। तनासरी महला चौथा।

तू सब ना करें एक दात, सब को तुझ ही विच है मेरे सहा, तू ते बाहर कोई ना है, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे सहा, सब तुझ ही माहे समा है, सब ना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे ते आवे मेरे सहा, ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह। तनासरी महला पंजवा, कर पहला चौपदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद पवखंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वच्छल निरंकारे, कोट प्राद मिटे खिन पीतर, जां गुरमुख नाम सुमारे, मेरा मन लागा है राम प्यारे, दीन दयाल करी प्रभु कृपा, वस कीने पंच दूतारे, रहाओ तेरा थान सुहावा, रूप सुहावा, तेरे भगत सोहै दरबारे, सर्ब जिया के दाते स्वामी, कर कृपा लिहो उबारे, तेरा वर्ण ना जापै, रूप ना लखिया, तेरी कुदरत कौन बिचारे, जल थल महियल रव्या सर्ब ठाई, अगम रूप गिरधारे, कीर्त करै सगल जन तेरी, तू अबनासी पुरख मुरारे, ज्यो पावै त्यो राखो स्वामी, जन नानक शरण दुआरे। तनासरी महला पंजवा, बिन जल प्राण तजे है मीना, जिन जल सो हेत बढ़ायो, कमल हेत बिन सो है पवरा, उन मार्ग निकस ना पायो, अब मन एक स्यो मोह कीना, मरे न जावे सदही संगे, सतगुर सबदी चीना, रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो, ओ परवस भयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका, उसी हेत बेदारा, देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना, अत रचियो कर लीनो अपना, उड़ छोड़ सरा पर जाना, बिन गोबिंदो अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बजायो, प्रीत प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवा, कर कृपा दियो मोहे नामा, बंधन ते छुटकाए, मन ते बिसरियो सगलो तंदा।

ब्रह्म पसार पसारे भीतर सतगुर ते सोजी पाई सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन बिनसो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल महियल सर्व निवासी नानकर मैया डीठा तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु भले दिन ओए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो रहाओ।

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानको जिन जमते काढे तिस गुर कह कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नेकी खटानी जी की कह ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख सोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सूजी। बिखिया मैं किन्ही तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां आगाई। रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटे ना भूखा। उद्दम कर सुवान की न्याई चारे कुंटा कोखा। कामवंत कामी बहु नारी परगरे जोहन चूकै दिन प्रत करै करै पछतापै सोग लो मैं सूकै। हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना। सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना। तनासरी महला पंजवा लवै न लागन कहो है कछुवै जाको फिर एह तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बने आवै। जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चितना बसा। रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरना साको उस तां की कीमत कहन न जाई। काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरै कमानो मंता। दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रव्या जो माता बाल गोपाला। तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया। महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

चंदन लेप होत देह कौ, सुख गर्दप भस्म संगीत, अमृत संग नाहे रुच आवत, बखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी, इस युग में पवित पुनीत। जात अकारथ जन्म पदार्थ, काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख भागे, गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो, नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवां, पानी पखा पीसो संत आगे। गुण गोविंद जस गाई, सास सास मन नाम समारे, विश्राम निद पाई।

प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सब ता कहो, बिख मन ना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम, जाप ताप परमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, एह बिदन है पतियानो ठाकर, जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल कहार जास, तिन पायो जिस कर पैन, साध संग रंग प्रपेटे, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावै, प्रभु मिलावै, हर हर नाम सुनावै, अस्त्र करे निचल एह मनुआ, बहुण ना कतहू कावै। है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा, इन स्यो प्रीत न लागे, संत संग संत संपाखन, हर कीर्तन मन जागे। गुण निदान दयाल पुरख प्रभु, सर्व सुख दयाला, मांगे दान नाम तेरो नानक, ज्यों माता बाल गोपाला। तनासरी महल

बाद जा कै संग तेरे बंधन छूट गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस कश पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जाको कृपा कीजै तनासरी महला पंजवा मेरे लाल भलो रे भलो रे भलो हर मंगना देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ चंदन चोवा रस भोग करता नेकै बिखिया बेकार देखो सगल है फीके एकै गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन तन तन अपन था प्यो हर जपना निमख जाप्यो अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना जा को रे करम पल्ला तिन ओट गई संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे काल कलेस लोभ मोह महापौजर तारे रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे साध संग जपन संग मन दान तारे चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा कार अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बसै।

निर्तन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनाश्री महला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नव निद सिद्धार लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का रव रया सर्व ठाई रहाओ। ता को कोई न पहुंचन हारा, जा कै अंग गुसाई, जमकी त्रास मिटै जिस सिमरत, नानक नाम ते आई। तनाश्री महला पंजवा, दर्भवंत दर्भ देह गर्ब है, पूमवंत अभिमानी, राजा जन सगल राज हमरा, त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है, जैसा बेत तैसा हुए वर्त है, अपना बल नहीं हार रहाओ। आन त्याग पय के आसर, सरन सरन कर आए, संतानुग्रह पय मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। तनाश्री महला पंजवा, जा कहो हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस तांके, जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग, सरनी पावन नाम ते आवन, सह समावन संग रहाओ। जन के चरण वसै मेरे ही अरे, संग पुनीता देही, जन की तूर दे हो कृपा निध, नानक कह सुख एही। तनाश्री महला पंजवा, जतन करे मान खुड है कावे, ओह अंतर जामी जाने, पाप करे कर मुकर पावे, पेख करे निर्बन, जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर, उत ताके उत ते उत पेख, आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटे नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। तनाश्री महला पंजवा, नाम गुर दी हो अपने, जाके मस्त करमा, नाम दृढ़ावे नाम जपावे, ताका जुग में तरमा। जन को नाम वडाई सोब, नामो गत नामो पत जन की, माने जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन के पाले, से ही पूरा सहा, नाम ब्योहारा नानक आधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा, नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे, माथे परोर वाल, रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल, तुम तव रखन हार दयाल, सुंदर सुगण बेअंत पिता प्रभ, हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बचन ने ऊपर साल, हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांध्यो पाल। तनाश्री महला।

मंतन राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहू जात। सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पही हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ सिओ लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तंते प्रीतम सिव मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवै जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम गोविंद मोदी।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना बेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा।

पलत सुख नित सुख सिमरन, नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटै कमाणे पाप चिराणे, साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राजोबन बिसरंत हर माया, महा दुख एहो महात कह, आस प्यास रमण हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लहै। शरण समराथ अकाथया गोचरा, पत ते उदारण नाम तेरा, अंतर जामी नानक के स्वामी, सरबत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवा, कर बारवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना, गुण गावो गोपाल राय। रहाओ वड्डे भाग पेटे गुरदेवा, कोट प्राद मिटे हर सेवा, चरण कमल जाका मन रापै, सोग अगन तिस जन ना ब्यापै, सागर तरिया साधु संगे, निरपव नाम जपो हर रंगे, पार तन दोख किश पाप ना फेड़े, जम जनदार ना आवै नेड़े, त्रिसना यगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ सरनाई। तनासरी महला पंजवा, तृप्त पई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया, जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग। रहाओ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए, अंधन कीर्तन हर गुण गाए, हस्ती रथ अस असवारी, हर का मार्ग हृदय निहारी, मन तन अंतर चरण ते आया, हर सुख निदान नानक दास पाया। तनासरी महला पंजवा, गुर के चरण जी का निस्तारा, समुंद सागर जन खन मैं तारा,

जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अधिक डराओ मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो पस ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हाँ पतत तरो तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी पर पूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर रस चुग चुगै प्रभावै सरवर में हंस प्राण पत पावै क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबै मैल ना जाए रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सरवर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहे समाए सरवर मैं हंस हंस मैं सागर अकत कथा गुरबचनी आदर सुन मंडलिक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे तिर पवन जोत रहे लिव लाई सुर नरनाथ सच्चे सरनाई आनंद मूला नाथा दारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल पै काटन हारे हमे मार मिले पगतारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मैं आए जन्म पदार्थ।

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मनपति आए। साचे निर्मल मैल न लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवण जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाई। बिन गुर भेटे मरियाई जाइए, रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै। अकथ कथावै शब्द मिलावै, हर के लोभ अवर नहीं कारा। सचो ठाकर सच प्यारा, तन मैं मनुआ मन मैं साचा। सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ कै लागै पाए। सतगुर पूरा मिलै मिलाए, आप दिखावै आपे देखै। हठ ना पतीजै ना बहु पेखै, घट पांडे जन अमृत पाया। प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया, पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे। बहुत सियाण पयावै जाहे, नाम जपै पौ भोजन खाए। गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा। परमत डोलत पय उदासा, मन मिलै सूचा क्यों होए। साच मिलै पावै पत सोए।

हमरे मन तनु राम को नामा। राम सिमरो राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से भाई बारह जो जन छत्र चले था देही गिरज न खाई सर्व सो इनकी लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई दुर्वासा सो करत ठगौरी जादवे फल पाए कृपा करी जने अपने उपर नाम देव हर गुण गाए दस बैर अग्न मोहे बस कीनी पंचों का मिट नावो सत्र दोए भरे अमृतसर बेको मार कढ़ावो पाछे बहुर ना आमन पावो अमृत बाणी करते उचराओ आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोहे है शीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो यह संसार ते तभी छूटो जो माया ने लिपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेहता दर्शन पावो इत कर भगत करे जो जानो तिन पौ सगल चुकाई है कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो ए संजम हर पाई है मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला ज्यो कुरंक निसनाद बालहा त्यों मेरा मन रामैया तेरा नाम रूडो रूप रूडो आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ ज्यो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पावरला ज्यो कोकल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी कौ जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला ज्यो तरणी कौ कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया बारक कौ जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली कौ जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डिठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुनरे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारना जमकारना पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृस्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कोल जन मदे मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्प तारो शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गाड़, ओ पाड़ी ले रावण बाण। साल बिसाल आन तोखी ले हरी, कर्म कर कशौटी मफीट सरी। पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन, ताचे मोहे जापी अले राम चे रामं। बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति।

काया बहु खंड खोजते नवनिध पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखावै तन्ना। गोपाल तेरा यारता, जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो, परिया शादन निकाया, नाज मंगो सत सीका। गौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। जय श्री महला चौथा, कर पहला चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मेरे हीर रत नाम हर बसिया, गुरहा तरियो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुखे उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, बिना मैं जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुरमूढ़ पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा, तिन साधु चरण ना सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाथा। मोको कीजे दास दास, दासन को हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन ज्ञानी, क्यों चले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुरे अंचल दीजे, जन नानक चले मिलन था। जय श्री महला चौथा, हीरा लाला मुल्क है भारी, बिन गाहक मीका काखा, रतन गाहक।

हस्त रथ असव पवन तेज तनी पूमन चतरंगा संग ना चालो इन मैं कछु है उड़ सदायो नांगा हर के संत प्रिया प्रीतम प्रभ के ता कह हर हर गाइय नानकी हां सुख आगे मुखी उज्जल संग संतन कह पाइय जैत सरी महला पंजवा कर तीजा दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद देहो संदेसरो कहियो प्रे कहियो बिसम भई मैं बहुविध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ को कहतो सब बाहर बाहर को कहतो सब महियो वर्ण ना दिसे चिहन ना लखिए सुहागन सात बुझहियो सर्व निवासी घट घट वासी लेप नहीं अल्पहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जैत सरी महला पंजवां।

बेसुमार बेअंत बड़ दाता मने घीरो पेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट उतसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो सरन परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल।

नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैसरी महला पंजवा जां कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वाको ब्याध ना काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिन कै संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन।

का निर्मल करत के आरो हर सिंचै सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे हैं आने पावना जीवत मीना बिरजल मरनाते हैं हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं चरण कमल नानक आराधे तिस बिन आन ना के हैं जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठकौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कवन हमारी लाए लाए लड़ दास जने अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म परम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवै पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिनसै हर सेवा निश्चल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूलेओ मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन कौ तायो रतन राम कढ़ी के पीतर ता को ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जय श्री महला नावा हर जू राख

नाहन गुनो नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजै। नानक हार पर्यो शरणागत अपह दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा मन रे साचा गहो बिचारा। राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ। जा को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबू नाए संभारा। नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अंदन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। शंत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी

नाद कुरंग कह बेदया सन मुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं सा सा सिया राधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना तूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक सेई तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक पावी उदोत करण हर रमण संजोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीम ना सक्का पाए सुख मिति हूं बाहरे नानक सावेलड़ी प्रवाण जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पातत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वार रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरप भय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यों संग पाइये वड्डे पुन आठ पहर हर त्याय हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास

खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतरजामी सुड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरा अमृत दृष्ट धारो प्रमान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूरा गावे समर्थ कान तेरी शरण जियन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पग की तूर दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ दै जसरव रहया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते सेजन कबो न मरते चूर तंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम दर्शन देखन कौ धारी मन आस रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जाको जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास सांत सहज सूख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पदत पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतर सभ्यता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा यान बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया शाल त्रिन की अगन में की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल रहाओ छोड़ सियान बहु चितराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का एहो उत्तम फल बेद बखयान करत साधु जान पागहीन समझत नहीं खाल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पय माल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवे परमेसर कोट फला दर्शन गुर डीठे रहाओ गुण गावत्या चुत अपनासी काम क्रोध बिनसे मद टीठे अस्त्र पय साच रंग राते जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक ना बेहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहजानंद होवै दिन राती अंकर भलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो वड भागी जां को अंत ना पारा वारा कर गह काड लियो जन अपना बिकसागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुना संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवे हर सिमरत बिन सह सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल बिख नास सिमरत पावन तन मन सुख देख सरू पूर्ण पई आसा दर्शन पेट उत्तरी भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय और तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ
पुन दान पूजा परमेश्वरो हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई उर्ज कनक कामनी के रस नह कीर्त प्रभ गाई रहाओ जग झूठे कहो साच जान कै ता स्यो रुच उपजाई दीन बंद सिमर्यो ने कबहू होत जो संग सहाई मगन रहो माया मैं निस दिन छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर काए रे बकबाद लायो जिन हर पायो तने छपायो रहाओ पंडित होए कै बेद बखाना मूर्ख नाम दियो रा मैं जाना कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही पतत पवित पय राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को परतग्या आई एकादशी व्रत रह काहे को तीर्थ जाई पणत नाम देव सुकृत सुमत पय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए तीन छंदे खेल अच्छा रहाओ कुंभार के कर हांडी अच्छा राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी अच्छा रांडी सांडी हांडी गो बाणिए के

जो तुद सेवै तिन भौ दुख नाहे, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए। जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरै संसार। कहो ना

करीमा रहीमा अल्लाह तू गने हाजरा हजूर दर पेश तू मने दरियाओ तू देहंद तू बिसियार तू तनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं बिचार क्या करी नामे चे स्वामी बख्संद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सामले बरना आसपात गजपात नरै नरेंद नामे के स्वामी मीर मुकंद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग

दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरनावण पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर ना कोई भगतहीन नानक जन जंपै हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांधया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला कर सेवा एको अंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटम कालड़ी मस तोतियां झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासो चितवियां हां टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुटकुट जियां खावणे बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईयां अवर स्याण पकित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सूही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कहे सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सूही महला पहला जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी इतना मिलिया गुर आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवे दिखिया चल सतगुर पाए पवे ना पीखिया। जा को महला हजूर दूजे नवे किस दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे उ सारे साज जाने सब सोए नाव नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जोत स्पाव सी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी ये द्वारे तोए हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी। जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाव आप वरताए सी।
ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਿਉ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ, ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ।

तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगे पुछ ना हो वही जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कांडिये जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए। एहो तन वेची बै करी जे को ले विकाए नानक कम ना आवई जतन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंडा जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ। जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना दे संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सदगुर भेटै ता सहसा टूटै तावत वर्ज रहाई है। निजर चरै सहे तुन लागै कर ही परचा पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है। वाजे बाजो सिंगी वाजै तौ निरपो पद पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है।

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयर भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सह तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मणजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। राग सुही महला चौथा, कर पहला एको ओंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सत संगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सत संगत, हम धोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुरु, हम वेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो ला जन के। सुही महला चौथा, हर हर नाम भजो पुरखोत्तम, सब बिन से दाल्द दलगा, पौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थर सेव सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मंतन अर्प धरियो गुरिया गै, सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस माने, बिन्ना मैं पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे, सरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको कीजे दान हर निमगा। जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम मिटाऊ सद घुमगा। सूही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठे रंग, गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बहु न हो वी भंग। मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर तुठे हर उपदेसिया, हर पेटिया राओ निसंग रहाओ। मुंद आणी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो, मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दोहचारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किल वख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हिरदा सुध ना होई, आन दिन कर्म करे बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए खुवाई। बाहर पेख बहुत चितराई, मनवा दे दिस्तावे, हमें ब्यापिया शब्द ना चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो बूझे।

प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोज आई हर हर नाम पदार्थ पाई मेरा मन हर हर सांत वसाई तिसना अग्न बुझी खन अंतर गुर मिलिया सब भुख गवाई रहाओ हर गुण गावा जीवा मेरी माई सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई हो हर पर प्यारा टूं टूंडाई सत्संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मेला हर पाई सुही महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए गुरमुख हर हर नाम समाए हर रंग राता मन रंग माने सदा आनंद रह दिन राती पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ हर रंग को लोचै सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मन मुख मुग्ध नर कोरा होए जे सौ लोचै रंग न हो वै कोई नदर करे ता सतगुर पावै नानक हर रस हर रंग समावै सुही महला चौथा जे वाह रस रही अगाए गुरमुख पीवै सही समाए हर रस जन चाखो जे पाई तौकत अंत साध लो भाई रहाओ गुरमत रस राखो उरतार हर रस राते रंग मुरार मन मुख हर रस चाखिया ना जाए हों मैं करै बहुती मिलै सजाए नदर करे ता हर रस पावै नानक हर रस हर गुण गावै सूही महला चौथा कर शेवा एको अंकार सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए पूछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया घर जिस जाए हर किया कथ कथा सुनो जन पाई जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ रविदास चमार उस्तत करे हर कीर्त निमख एक गाए पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोक शिपा कह बुलाए खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे हर नाम देव लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढाए जन नानक तिन को वंदन परसे जय कृपा करे हर राय

जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर हर त्याय मन मेरे मन त्याय हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ, तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे ते सहलत पलत मोहकारा, से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते हर पाई है सिर निंदक पवे इशारा, जिस घर विरती सोई जाने जगत गुरु नानक, पूछ करो बिचारा चहो पीड़ी आद जुगाद, बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा, सुही महला चौथा, जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै होर तबिद लया ना जाई, हर तन संचिय पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ, सत संगति संग हर तन खटी है, होर थै होरत उपाय हर तन कितै ना पाई, हर रतन का वापारिया हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वाके हर तन लया ना जाई, हर तन रतन जिवे हर माणक, हर तन नाल अमृत वे लैवतै हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वे लैवतै का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटै नाही, हालत पलत हर तन की भगता को मिली वडियाई, हर तन निरपौ सदा सदा असर है साचा, एहो हर तन अग्नि तस्करै पानिया जमदूतै किसे का गवाया ना जाई, हर तन का उचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई, सागती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिन्ना एक विख नाल ना जाई, हलते विच सागत दुहेले पए हथों छुड़क गया, अगे पलत सागत हर दरगै टोई ना पाई, इस हर तन का साहू हर आप है संतो, जिसनों दे सो हर तन लद चलाई, इस हर तन का तोटा कदे ना आवई, जन नानक कौ गुर सोजी पाई, सुही महला चौथा, जिसनों हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवै, सो भगत सो परवान, तिसकी महिमा क्या वर्णी है, जिसके हृदय वसिया हर पुरख भगवान, गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ, सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है, जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए सागत कामना अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सो नेफर सब अगे

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरी जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान देवाए, ज्यो धरती चरण तले ते उपर आवै, त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, सूही महला चौथा तू करता सब किछ आपे जाने, क्या तुद पै आख सुनाई है, बुरा भला तू सबके सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाने, बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड़ियाई तू है जाने, सब तुदनो नित ते आए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए,

ब्रह्मा बिशर महादेव त्रै गुण रोगी विच हो मैं कार कमाई जिन किए तिसे न चेतै बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई हौ मैं रोग सब जगत व्यापिया तिन कहो जन मरण दुख पारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन कहो हौ बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै ताका रूपया पारो नानक आपे वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो सुही महला चौथा कीता करना सरबर जाई किश कीचै जे कर सकी अपना कीता किशु ना होवै ज्यों हर भावै त्यों रखी मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किश कर हम साकै ज्यों भावै तिवें बख्स रहाओ सब जियो पिंड दिया तुदे आपे कर लाया जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै जेहा तू तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद सिरिट सब साजी कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै एक ना सतगुर मेल तू बुझावै एक मनमुख करै से रोवै हर की वडियाई हौ आख ना साका हौ मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक कहो हर बख्स लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी घर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एक ओंकारा कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कत गयो ओ कत आयो रहाओ जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहुरंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते कंकारा सहस घटा मैं एक आकाश घट फूटे ते ओही प्रगास परम लोभ मोह माया विकार भ्रम छूटे ते एकंकार ओह अबनासी बिन सतनाही ना को आवै ना को जाही गुरपूरै हौ मैं मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई सुही महला पंजवां कीता लोड़ै सो प्रभ होए तुद बिन दूजा नाही कोए जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की रख लाज तेरी शरण पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाओ जल थल महियल रहया भरपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पतियारै कछु ना पाइयै साच लगै ताहौ मैं जाइयै जिसनो लाए लय सो लागै ज्ञान रतन अंतर तिस जागै दुरमत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दुइ कर जोड़ करो अरदास तुद भावै ताणै रास कर कृपा अपनी भक्ति लाए जन नानक प्रभसदा ते आए सुही महला पंजवां धन सोहागन जो प्रभु पछानै मानै हुक्म तजै अभमानै प्रेसे राती रलिया मानै सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तजला जलुकानी रहाओ सखी सहेली कौ समझावै सोई कमावै जो प्रभ पावै सा सुहागण अंक समावै गर्भ घेली महल ना पावै फिर पछतावै जब रहन विहावै कर्महीन मनमुख दुख पावै बिना करीजे जाना दूर प्रभ अबनासी रहा भरपूर जन नानक गावै देखा दूर सुही महला पंजवा गृह वस गुर की ना हो कर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समग्री मैं कर की जोड़ी आस प्यासी पिर कौ लोड़ी कवन कहां गुण कंत प्यारे सुगण स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ सत सिंगार पौ अंजन पाया अमृत नाम तम बोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा पिर कर आवै
ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰ ਕੰਤਰੀ ਜਾਇਆ, ਵਸ ਕਰ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮੰਦਰ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕਾਮਣ ਤਿਆਗੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ ਜੋਤ ਉਜਿਆਰਾ, ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਸਰਦਿਆ ਪਾਰਾ, ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੇਜ ਰਾਵਣੇ ਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਤਨ ਮਿਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉਮਕਿਓ ਹੀਓ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇ ਜਾਈ, ਸੁਨਤ ਸੰਦੇ ਸਰੋ ਪ੍ਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ, ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ ਤਉ ਨਦਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਹੀਅਰੋ ਧੀਰੇ ਨਿਮਾਨੋ, ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਹਾਂ ਤੁਜ ਕੁਰਬਾਨੋ, ਰਹਾਓ ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ੀ ਧਨ ਕੰਤਾ, ਧਨ ਸੂਤੀ ਪਿਰ ਸਦਜਾ ਗੰਤਾ, ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ, ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਪਿਰ ਬੋਲੰਤਾ, ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ, ਖਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਾ ਬਿਨ ਪਗ ਪਾਗੇ, ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਇਸ ਭਾਗੇ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਬੂਜੀ ਤਪਤ ਕਰੈ ਪਿਰ ਪਾਇਆ, ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਜੈ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਪਿਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਖੋਲਿਓ ਕਪਾਟ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ, ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे मित नहीं पाई है।

संत करे हर रंगा, तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। गोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा कै दर्स पाप कोट उतारे, भेटत संग एहो पव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे रहाओ। जा का शब्द सुनत सुख सारे, जा की टहल जमदूत बिदारे। जा की तीरक इस मने सुधारे, जा कै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे। सूही महला पंजवा, रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ। बाद सहा सहा वापारी मरना, जो दिसै सो कल है खरना। कूड़े मोहे लपट लपटाना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना। किरपा निधान नानक कौ करहो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा, घट घट अंतर तुम्हें बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे। तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तुम ही पेख पेख मन बिकसारे रहाओ। अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे, ओट गही अब साध संगारे। अगम्या गोचर

घुड़सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाओ। प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवै, खात खर्चत सुख अंध विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हम।

जिस कृपा करे बसे तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब से गुर पूरे, मिल पाप तजायण रहाओ। जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदै रचियो मूड़ा।

दर्शन कौ लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई प्रेम विशोहा करत गसाई। निर्दय जंतु तिस दया ना पाई, अनक जन्म बीतियन परमाई करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दीजै कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, घर चौथा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए कित ही कामना तौल हार। जित हर बिसराए रहाओ, अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना माया लपटाए, पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै ओह शोभा पाए, पाठ पटंबर बिरथिया जेह रचलो।

मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई तजा मान सरनी परो हर गुण निद पाई अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचाओ बंदाओ बार बार चितवो मन आसा करो जन का संग मांगो नानक को प्रभ दया करो दास चरणी लागो सुही महला पंजवा जन मोहे ब्रह्मांड।

छोड़ जाहे जो सगल कहो फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा कर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना जप मन गोबिंद एक है अवर नहीं को लेख है। संत लाग मने छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया निज मंदिर प्रिया तहां आनंद करिया। न मरिया न जरिया कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सुही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा पेखै खुशी भोगन ही हारा। सब रस लैत बस्त निरारा वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा नानक रेण।

ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरै पठाया रहाओ। महादुत्तर माया जैसे पवन चुलाया, सुर सुन ही डराया कर रो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया पावक सगराया, गही ओढ़ साधाया नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवां, कर छेवां एको ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतियां, मिलै नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा रहाओ। सच तेरी सामगरी, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खजीनिया, सच तेरा पासारा। तेरा रूपया गम है अनूप तेरा दरसारा, हम कुर्बानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम्या पारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरिया चरणा कौ बलिहारा। राग सूही महला पंजवा, कर सतवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाए, जिसनो होहे दयाला। साई भगत जो तुद पावे, तू सर्व जिया प्रतिपा।

तू दयाल कृपाल कृपा निद मनसा पूर्ण हारा। भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा। तू अथाह अपार अति ऊंचा कोई अवर ना तेरी पत। ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते। दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा। नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठै पावा। सूही महला पंजवा विसरै नाही जे तू कबहू सो थान तेरा केहा। आठ पहर जे तुद ते आई निर्मल होवै देहा। मेरे राम हौ सो थान पालन आया। खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिरै बिललाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवधूता। तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया। सूही महला पंजवा कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै। संत हो सागर पार उतरिया जे को बचन कमावे संतन का। सो गुर प्रसादी तरिया रहाओ कोट तीर्थ मजन इस नाना इस कल में मैल भरी जै। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौ वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवा जो किश करै सोई प्रमानै। ओए राम नाम रंग राते तिन की शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संता जीवट ना कोई। भगता बने आई प्रभ अपने स्यों जल थल मैयल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उदरे जमता कै निर्णयावै। जन्म जन्म का विछड़िया होवै तन हर स्यों आन मिलावै। माया मोह परम पौ काटै संत सरण जो आवै। जिहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावै। जन की महिमा केतक वर्णा जो प्रभु अपने पाणे। कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पए निकाणे।

आस चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंध कूप ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखै ठाकर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटै कतहूं काची देह आणी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते घट घट तुही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिना के काम मेरे राम हर जन कह हम बल जाई केसा का कर

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

तिन मुख नाम न उपज दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो। करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै ते तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबी है सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगे देवना पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरै बख्शे बख्शनहार जियो। अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान में होनिया गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान में गुच्ची है बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैर ते आ सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारे आ सब सहदे आधार जियो। सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो। नानक नाम ना विसरै निदारा आधार जियो। सुही महला पहला काफी कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया। चलै जन्म सवार वखर सच लै पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ। मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रता मन मानिया गुरपूरा पाया। हौ जीवा गुण सारे अंतर तू वसै मन माए सहजे रस रसै। मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना। मन मुख परम पुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाणा मन तन भंग है। गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। एक नानक की अरदास जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी। सुही महला पहला ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाई है त्यों साक्त जोनी पाए पवै पवाई है। बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हाँ मैं आवै जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखनहार हर नाम ते आई है मिले तुझे रजाए शब्द कमाई है। तू कर कर वेख आप देह सो पाई है तू देख थापो थाप दर भी नाई है।

गर्भ मुसै कर चोर किस रू आई है, गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग जो दी पाई है, लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है, सदा रह निकाम जे गुरमत पाई है, आराध्य है हर नाव मन वसाई है, नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है, सूही महला पहला मनो ना नाम विसार, अहन सत्याई है जो राखे कृपा तारत वै सुख पाई है, मैं अंदले हर नाम लखटी टोहनी, रहो साहिब की टेक ना मोह मोहनी, रहाओ जै देखो तै नाल गुर देखालिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया, सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे तवैर जाए परम पौ पंजना, जन्मत ही दुख लागे मरना आए कै, जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै, हौ नाही तू होवे तुद ही साजिया, आपे थाप थाप शब्द निवाजिया, देही पसमर लाए ना जापी कह गया, आपे रया समाए सो विस्माद पया, तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेखा दूर अंतर पी तू है, मैं दीजे नाम निवास अंतर सांत होए, गुण गावे नानक दास सतगुर मत दे, राग सूही महला तीजा कर पहला, अष्टपदियां एको अंकार सतगुर प्रसाद, ना मैं ही ते सब किश होवा बिन सतगुर नाम ना जापै, गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै, कौडी बदले जन्म गवाया चीनस नाही आपै, गुरमुख होवै ता एको जाने हौ मैं दुख ना संतापै, बलिहारी गुरे अपने विटाओ जिन साचे स्यों लिवलाई, शब्द चीन आत्म पर गासिया सहजे रिया समाई, रहाओ गुरमुख गावे गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द बीचारे जियो पिंड सब गुरते उपजै, गुरमुख कारज सवारे, मनमुख अंधा अंध कमावे बेखटे संसारे, माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुरियत प्यारे, सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाए, साचा शब्द सिबत है साची साचा मन वसाए, सच्ची बाणी गुरमुख आखे हम मैं विचों जाए, आपे दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए, गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिप्त साचा रंग राता गुर कै सहि सुभाए, मनमुख सद ही कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कमन छड़ाए, सच्चा तीर्थ जित सत सर नावण गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीर्थ गुर शब्द दिखाए तित ना तै मल जाए, सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मल लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची साला पूरे गुर ते पाए, तन मन सब किश हर तिस केरा द्रुवत कहन ना जाए, हुक्म होवै तां निर्मल होवै हम मैं विचों जाए, गुर की साखी सहजे चाखी तृष्णा यगन बुझाए, गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रया समाए, हर का नाम सत कर जाने गुर कै पाए प्यारे, सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे, एको सच्चा समय वरतै विरला को विचारे, आपे में लय ता बक्से सच्ची भगत सवारे, सबो सच सच सच वरतै गुरमुख कोई जाने, जमन मरना हुक्मो वरतै गुरमुख आप पिछाणे, नाम ते आए ता सतगुर पाए जो इच्छा सो फल पाए, नानक तिसदा सब किश होवै जे विचों आप गवाए,
ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਅਤ ਸਵਾਲੇ ਓ ਪਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਪਿਰ ਸੱਚੇ ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ।

काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला, काया का मन सदा सुहेली गुरमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई, मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नवनिद पाई है गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावै आपे तोलनहारा, एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाइय नाही नाम पाइय गुर बिचारा, गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतराई, काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा, सच्चा अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी, विण नावै दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी, नानक सच वड्याई पाए जिसनो हर कृपा धारी, राग सुही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंज सी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाहो, रहाओ दुनिया के री दोस्ती मनमुख दज मरन, जंपर बदे मारी है वेला ना लाहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पायर चन, तिसना भुख ना उतरै अंधन जलत फेरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन, आप डुबे कुटम स्यो सगले कुल डोबन, निंदा पली किसे की नाही मनुख मुग्ध करन, मोह काले त्रिनिंदका नरके कोर पवन, ए मन जैसा

ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल न तुमाए गुणकारी गुण संगर अवरा उपदेशन सेवड़ भागी जे।

मैं तुझ ऊपर बहु माणिया, जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया, जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वे खाल, एहा पाई मुदा तड़ी नित हृदय रखा समाल, पाव जुलाई पंद ताओ नैनी दर्श दिखाल, श्रवणी सुनी कहानिया जे गुरथी वै कृपाल, किती लख करोड़ प्रिये रोम न पुजन तेरिया, तू साही हूं साहो हौ कह ना सका गुण तेरिया, सहिया तऊ असंख मन्यो हब वदानिया, हिक पोरी नदर निहाल देह दर्स रंग माणिया, जय डिठे मन तीरी है किल विख वंजन दूरे, सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया पर पूरे, होए निमाणी टह पई मिलिया सहे सुभाए, पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाए, सूही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गाली होछिया, नाम निदान अपार भगता मन वसै, जन मरण मोह दुख।

नरक स्वर्ग अवतार माया तंदया। सोदत सोदत सोद सोद सोदत सोदत सोद तत विचारिया, नाम बिना सुख नाहे सर पर हारिया। आवे जाय अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी परम ते। जिन कौ भय दयाल तिन साधु संग पया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला, कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन कुचजी अमावन डोसड़े, हों क्यों सौ रावण जाओ जियो। एक दू एक चढ़ंदियां, कौन जाने मेरा नाओ जियो। जिनी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी यह जियो। से गुण मंजना यावनी, हों कह जी दोस्त रेव जियो। क्या गुण तेरे विथरा, हों क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो। एक तटोल ना अंबड़ा, हों सतगुर बाण तेरे जाओ जियो। सोइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो, से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो, हों एनी टोली पुली अस तिस्कंत ना बैठी पास जियो। अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो, सातन चली साहोर क्या मोह देसी अगे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वटड़ यास जियो, तै सह नालो मुती अस दुखा को तरियास जियो। तुद गुण मैं सब अवगणा, एक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी, जा तू ता मैं सब को, तू साहिब मेरी राज जियो। तुद अंतर हों सुख वसा, तू मंत्र साबास जियो। पाणे तख्त वडाइया पाणे पीखो दास जियो, पाणे थल सिर सर्व है कमल फुलै आकाश जियो। पाणे पवजल लंगिया पाणे मंझ परिया जियो, पाणे सो सहो रंगला सिफतरता गुणदास जियो। पाणे सह पिहावला यावन जान मुइया जियो, तू सौ अगमा तोलवा हों कह कह टह पैया जियो। क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन पूख प्यास जियो। गुरसबदी सह पाया सच नानक की अरदास जियो। सूही महला पंजवा गुणवंती, जो दिसे गुरसिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस्यो

निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होए दासा जीवत मरी है भौजल तरी है जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से बीजे अमृत पीजे जिसला वह सह ध्यानो नानक शरण पया हरिद्वार हो बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सतगुरबाणा सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसके बलराम जियो बाबल मेरा वड़ समर्था करण कारण प्रभारा जे सिमरत दुख कोई ना लागे भौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हर आपे लय मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जियो जिसनो तेरी टेक सो सदा सजी वही बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपूरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जी ओ सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जी ओ गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जमिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रपुरख करने हारे उपजया तत ज्ञान साहुरे पेईए एक हर बलराम जियो ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई ना सकै पिन कर बलराम जियो बिस्म पेखै बिस्म सुनिए बिस्माद नदरी आया जल थल महियल पूर्ण स्वामी घट घट रहा समाया जिस ते उपजया तिस माहे समाया कीमत कहन ना जाए जिसके चलत ना जाही लखणे नानक तसै ते आए राग सूही शब्द महला पंजवां कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हर रंग आंदन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया गुरचरण लागे परम भागे का सगल सवारिया सुन सरवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड भागे बिनवंत नानक सरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगे अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर हर दुख नासे रहस्य उपजे मन कणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुखपणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धारो सदा हर गुण गावा गुरमिल सागर तरिया हर चरण जपत निस्तरिया हर चरण त्याए सफल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सवाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख्या पार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर भरम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ ते आया सगल इच्छा पुनिया आओ ताप बिनसे सदा सरसे प्रभ मिले चिरी विशुन्या मन सांत आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया सदा भज जगदीसरै
ਅਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਕਣਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੜਦਾਣਾ ਕਰ ਮੇ ਰਮਤ ਸਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਦਿਹਾਈ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋ ਵਿਜੈ ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਅ ਰੇ ਤੇਰੀ ਸਭੀ ਉਪਰ ਨਾਨਕਾ ਠਾਕਰੋ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਕਣਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੁਮ ਗੌਹਰ ਅਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਤੁਮ ਪਿਰ ਹਮ ਬਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੂਚੇ ਹਉ ਇਤਨੀ ਕਲਹਰੀਆ ਰਾਮ ਹਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਸਰਬ ਰੰਗ ਰਸਮਾਨਾ ਚਰਣ ਹੈ ਸਰਣੀ ਦਾਸੈ ਦਾਸੀ ਮਨ ਮੌਲੈ ਤਨ ਹਰੀਆ ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰੀਆ ਤੁਝ

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम, हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकर से मन माना, प्रभु जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई सोप्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिने अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंधप जी प्राण मन भाणा राम, जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोप्रभ मेरा सर्वरया परपूरे। ता की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ कौ बलिहार है नानक सतगुर बाणा। ऐसा गुरवट भागी पाईए जित मिले प्रभ जापै राम, जन्म जन्म के किलवख उतरे हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है, बाहुड़ जोड़ ना आई है गुरचरणी लागे परम पौ भागे, मन चंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै, नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापै। हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसियाए राम, संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी। जिसका साथ तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे नया वै जाई राम। अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए। पूर रहया कट कट अबनासी थान थनंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम। लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम। हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई, जल थन मयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई। परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखै दर्श तेरा। कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम, सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम। कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना, हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहित आना। काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभ कृपा कीजै हर गुण सुनिए अविनासी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम। पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग, कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चलै तेरे मार्ग। एहो वर एहा वडियाई एहो तन होए वडभागा राम, एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला, सब किश कीता तेरा सब किश तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकर दीन दयाला।
मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। सोही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावै राम सिमर सिमर।

भला संयोग मूर्त पल साचा अब चल निवर खाई जन नानक प्रभय दयाला सर्व कला बने आई। आनंदा वजह नित वाजे पार ब्रह्म मन उठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिरसे परम पै झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया। घर मैं नवनिध परे भंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरै।

सब चलै रजाई। सलोक महला तीजा। सुहै वेस कामन को लखनी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार। ओस सील ना संजम, सदा झूठ बोलै मनमुख कर्म खुवार। जिस पूर्व होवै लिखिया, ते सतगुर मिलै पतार। सुहा वेस सब उतार धरे, गल पहरै खिमा सिंगार। पेयै सहुरै बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओहर लाई किसै दी ना रलै, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख

मैं तन अवगण हितड़े खसमना फेरे चित महला पहला हौ बलिहारी तिन को सिफत जिन्ना दैवात सब राती सोहागणी एक मैं दोहागण रात पौड़ी दर मंगत जा चैदान हर दी जय कृपा कर गुरमुख लेहो मिलाए जन पावै नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत धार हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग मैं वरत आप हर सेती प्रीत कर श्लोक महला पहला जिनी ना पायो प्रेम रस कंत ना पायो साओ सुन्ये कर का पाहुना ज्यों आया त्यों जाओ महला पहला सौ उलामै दिने के राती मिलन सहंस सिफत सलान छड कै करंगी लगा हंस फिट अवेहा जीवे आ जित खाई वधाया पेट नानक सच्चे नामिण सबो दुश्मन हेत पौड़ी ढाडी गुण गावे नित जन्म सवारिया गुरमुख सेव सलाहे सच्चा उरतारिया कर दर पावै महल नाम प्यारिया गुरमुख पाया नाम हौ गुर कौ वारिया तू आप सवारै आप सिजन हारिया श्लोक महला पहला दीवा बलै अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापा खाए उगवै सूर न जापै चंद जह ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत वेद पाठ

जरा हाक दी सब मथा की एक ना था कसमाया। बावरे तै ज्ञान विचार ना पाया बिरथा जन्म गवाया रहाओ। तब लग प्राणी तसै सरेवो जब लग कट मैं सासा। जे कट जाए ता पाओ ना जासी हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावै अंतर चूकै तसै प्यासा। हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जन टाले पासा। जो जन जान भजै अवगत कहो तिनका कछु ना नासा। कहो कबीर तेजन कबो ना हारै ढाल जो जानै पासा। सूही ललित कबीर जीओ एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगै हाला। जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। हर के लोगा मोको नीत डसै पटवारी। ऊपर पुजा कर मैं गुर पै पुकारिया तिन्हो लिया उबारी रहाओ। नौ डाडी दस मुंसफ धावै रैयत बसन ना देही। डोरी पूरी मापै नाही बहु बिस्टा ला लेही। बहत्तर घर एक पुरख समाया उन्दिया नाम लिखाई। धर्म राय का दफ्तर सोधिया बाकी रिजम ना काई। संतां को मत कोई निंदो संत राम है एको। कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सहकी सार सुहागन जानै ताजा मान सुखरलिया मानै। तन मन दे न अंतर राखै अवरा देखना सुनै अपाखै। सो कत जानै पीर पराई जाकै अंतर दर्द ना पाई रहाओ। दुखी दुहागन दोए पखहीनी जे ना निरंतर भगत ना कीनी। पुरस लात का पंथ दुहेला संगना साथी गवन अकेला। दुखिया दर्द वंद दर आया बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानो त्यों कर गत मेरी सूही। जो दिन आवै सो दिन जाही करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है हम्पी चलना दूर गमन सिरी ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग याना तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबर आवै सब कट पीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा हृदय नाम समार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दिवाने चेतस नाही दुनिया फनखाने। सूही ऊचे मंदर साल रसोई एक करी फुन रहन ना होई। एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा ओए पी लागे काड़ सवेरा। घर की नार उरै तन लागी ओ तो पूत पूत कर भागी। कह रविदास।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिलावल महला।

अगमा गोचर लाख्या पारा चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जोत तुम्हारी। सिख मत सब तुम्हारी मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावन तेरे। जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार पूंडी कामण कामण यार, राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया ठाक रहे मन साचै धारिया। अवरना सूजै गुर कौ वारिया नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला गुरबचनी मन सही ध्याने, हर कै रंग रता मन माने। मनमुख परम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियारा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दसन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। त्रिग शरीर कुटंब सहित स्यों, जित हुण खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै, अहला जन्म गवाया। दूजा पाव ना दे लिव लागण, जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दा

मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख वखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कही है मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सुवारे परम पुलाने से मनमुख कही है नारोवार ना पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माहि निस्तारे नानक भाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तो लिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तिसते दूजा नाही कोए तिसदी कीमत किकू होए गुर प्रसाद वसै मन आए ता को जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए माया का रूप सब तिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगै तसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव तात है आपे आप आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवको सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनया है समय एक समाना सतगुर परचय हर नाम समाना जिस कर्म होवै सो सतगुर पाए अंधन लागै सही ध्यान ना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा वखियाना आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना जो आप चलाए तवै कोई चालै जो हर पावै भगवाना कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाने तेरे कामा एक ना करमै दे वड़ियाई एक परम पवै अभमाना बिलावल महला तीजा पूरा थट बनाया पूरा वेखो एक समाना इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई मत को तरो गुमाना सतगुर की जिसनो मत आवै सो सतगुर माए समाना एह बाणी जो जियो जाने तिसे अंतर रवै हर नामा रहाओ चहो जुगा का हुण नबेड़ा नर मनुखा नो एक निधाना जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है कल मैं कीर्त हर नामा जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पावै मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हाँ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जो आवस है मन आए आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते शब्द रंगाए निकर वासा हर गुण गाए रंग चलू लै हर रस पाए एहो रंग कदे न उतरै साज समाए अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तन बौन ना फेरा नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा बिलावल महला तीजा पूरे गुरते वड्याई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई हाँ मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुरते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवरना काजा अन दिन अंध होवै मन मेरा गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुरते शब्द बुझाई जीवन मरण को संसार वेखै
बहु न मरै न जंपे खै कर ही मैं सब कोट निदान। सतगुर दिखाए गया अभमान सद ही लागा सही ध्यान अंधन गावै एको नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम ते आई जै देखा तरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे भाग गुरपुरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया गुर का शब्द वत मीठा लाया नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यो करना ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती त्यो वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना ज्यों प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवन्ना ओ ढोवे ढोर हाथ चम चमरे हर उदर्यो पर्यो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा। हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती सरनागत पुरख्या जन्मा कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकरो हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम ना मैं रामा गुरमत हर रस पाईए होर त्यागो ने फल कामा रहाओ। हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर हर जपिए वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वर दुख सहमा ओए फिर जोन पवाईए मंद भागी मूड़िया करमा। हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वडकर्मा गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुभत मोहे बिखिया बहु दुर्बत मैल परा तुमरी सेवा करना सकै प्रभ हम क्यों कर मुग्द तारा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी मेरा सतगुर पार परा रहाओ। हमरे पिता ठाकर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरा संग लगे से उधरे ज्यो संग काष्ट लोह तरा। सागत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेवना करा ते नर भागहीन दोचारी ओए जन्म ओए फिर मरा। जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी ते नाय संतोख गुरसरा दुर्मत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोए थे कल जुग खेवट गुर सब तरो। मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर में राम रसी उत्तम क्यों पाई अब दे जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ। गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो। राम नाम रस राम रसायण हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए। गुरमत नानक हर भजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सो सब रैनी। हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ। अन क्यों पाव चितविए बहु तेरे सा होवै जे बात हो वैनी अपना पला सब कोई बंश है सो करे जे मेरा चितना चितैनी मन की मत आगो हर जन एह बात कठैनी। आन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी मत सुमत तेरे वस स्वामी
हम जंत तू पुरख जंतैनी जन नानके प्रभ करते स्वामी ज्यो पावै तवै बुलैनी बिलावल महला चौथा। अनद मूल त्यायो पुरखोत्तम अंदन अंद आनंदे धर्मराय की कान चुकाई सब चूके जमके छंदे जप मानो हर हर नाम गोविंदे वडभागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड़ माया के बदक विच माया फिरै फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांधे ज्यो तेली बलत पवंदे गुरमुख सेव लगे से उधरे वडभागी सेव करन दे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवको सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरतै ज्यो राखै तवै रहंदे राग बिलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम करयासा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नदरी आवै तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो साथ संगत कै अंचल लावो क्यों तरिय बिखिया संसार सतगुरु बोए।

हो मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध, जो गूंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिगन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड़ प्रताप। गुर प्रसादना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम हो तनशार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक, अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे। राखण कौ तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे। सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे। जिसनो होए दयाला, सफल मूर्त गुरदेव स्वामी। सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर। सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की। जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम आराधे नाम वखाणे। हर नाम में ही मन राता, सेवक जन की सेवा मांगे। पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी। तेरे जन देखण पावा, वडभागी से काढ़िया प्यारे। संत संगत जिन्ना वासो, अमृत नामा राधिये निर्मल। मने होवे परगासो, जन्म मरण दुख काटिये प्यारे। चूके जम की काने, तना प्राप दर्शन नानक। जो प्रभ अपने पाने, ऊंच या पार।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन समत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मंगन, तुम पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काट है पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पारे उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंधकूप ते कर गै लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भय परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई मीता, चरण कमल स्यों लाइया चीता, हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझे हर हर गुण गावत। रहाओ सफल जन्म होवत वटभागी, सा संग्राम लिव लागी, मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमख ना विसराओ परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, पंत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणे बेहूना, दया तारे अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर में आया। रहाओ भगत वछल पै कट नहारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतत पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, सासंग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी लाख्या पेवा, गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे। रहाओ एक बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई, कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्मे हा दे राखिया, हर छोड़ बिख्या फल चाखिया, भज गो बिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संगारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल। रहाओ तन मन तने अपना कर थापिया, करण हार एक निमख ना जापिया, महा मोह अंधकू परिया, पार ब्रह्म आया पटल बिसरिया।
ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧੋ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਹੋਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਕੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ ਰਹਾਓ ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਹ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਵਿਧਾਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਕਰ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰਿਆਣਿਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਵਨਦਾਨ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਾਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਰ ਜੀਵੇ ਮਰਖਵਾਰ ਸਗਤ ਨਰ ਥੀਵੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੋਵਾ ਰਖਵਾਰਾ।

जैसा सुपनारायण का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी क्या लगे गवार। कहां सो भाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से असर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड्याईया, बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना। ते बोल करा गो जो प्रभ जियो दयाल होए, तो भक्ति लागो लपट रहो मन बासना, गुर मिले त्यागो रहाओ। करो बेनती अत कनी यो जियो हम मांगो, अर्थ आन सवारिया प्रे निमख सुहागो। पंच संग गुर ते छुट्टे दोख हर रागो, हृदय प्रगास प्रगट भया निस्बा सर जागो। सरण सुहागन आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड भागा मैला कदे ना हो वही न लागे दागा। प्रभ पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए, सहसमाना भीतरे छोड़िया न जाए रहाओ। जरा मरा न व्यापई फिर दुख ना पाया, पी अमृतया गान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा रखो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारे सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे। मान करो तुदी उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद पूलते तुम बख्शन हारे। रहाओ हम अवगन करें असंख नीत, तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे, तुम देवो सबके दया तार। हम अकृत कनारे लाग परे तेरे दान स्यो नैचित खसमारे। तुई ते बाहर किश नहीं पव काट नहारे, कहो नानक सरण दयाल गुर लेहो मुगदे उधारे। बिलावल महला पंजवा दोष ना काहू दीजिए, प्रभ अपना त्याई है। जित सेवे है सुख होए घना, मन सोई गई है। कहिए काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब

जो तुम करो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरी आ, सब तेरी जुगता, चरण पखारो कर सेवा, जे ठाकर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै। बिलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बूझै, बाद साध हंकार में, मरना नहीं सूझै, सतगुर सेवो अपना, काहे फिर अपागे, देह कुसुम्बा रंगला, काहे फूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्पण की, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कहताई, माटी स्यो माटी रली, नांगा उठ जाई, जा कह किया श्रम कर, ते बैर विरोधी, अंत काल पा जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी, दास रेण सोई होवा, जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता अंदर।

कमल मंथन बसे प्रवयग में अपार, बस्त कमावत सब सुखी किश न दिसै, संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै। जय जयकार सबै करै सत थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवां, हर हर हर यारा दिया होई है आरोग, रामचंद की लष्ट का जिन मारिया रोग। रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचै भोग, साध संगत कह वारण मिलया संयोग। जिस सिमरत सुख पाई है बिन सह बेहोग, नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा, दो पदे कर पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आवरियो पाप सब त्यागया, दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग। शीतल मन पया गुरपुरा आरा दया, सगला दुख गया राखन हार राखिया अपनी करमया। रहाओ बहा पकड़ प्रभ का डेया, की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा, कर धर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान। आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित वह साध जान सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद, जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप। राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागै, नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागै। बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागै, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागै। राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागै, तंत मंत न जो है तित ताख न लागै। रहाओ काम क्रोध मदमान मोह बिन से अनरागै, आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागै। बिलावल महला पंजवा, जी जूत वस प्रभु कै जो कह सो करना, पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किछ नहीं करना।

गावत प्रभ नाम सहज सुख्या आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट पय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पय सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा का वड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे दुप दे कर शेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर, एह दृष्ट दृष्टाए अभमान खोए खोए खोए खोई हों। मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए, अतुल अतुल अतुल नह तुलिए भगत वच्छल कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुरु नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरणार है। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काट लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस कोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर कै बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाहया गुर सृजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जौ पेखियो कहन न जाए वड्याई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जा से ओ राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहे हो इंद्री रस प्रेरे हो बिखै ठगौरी खावत है। तृण को मंदिर साज सवार हो पावक तलै जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठ ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहे हो मदमावत है। जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम या पारिया मोली प्राण प्यारो मने अधारो। चीत चितवो जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुखला गो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर रहे हो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए
तह मेरे प्रभ तुह सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधिया कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगती त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी। रहाओ सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना साको, गुरपूरै मेरी उल्ट धरी। पेख्यो मोहन सब कै संगे, ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हों क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आग्या क्या कहता। रहाओ अन बोले कहो तुही पछाने, जो जियन मैं होता, अरे मन काय कहां लौ डह कह, जो पेहती संग सुनता। ऐसो जान पए मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, ज्यो कालर पीत गिरी है। रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितव नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरी है। नानकारा खाया प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे। रहाओ काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे। अंधकू मैं परयो परानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटै काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय आनंदा मिट आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना। रहाओ एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने को, काहू ना करते कश कीना। बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। रहाओ निवरे दूत दुष्ट बहराई, गुरपूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे कावड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, आगै दरगै पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिय नित सरनी, गुर ते पाई हो निदान, जन मरण की कटिया फांसी, साची दरगह का निशान। जो तुम करहो

सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा, गुरप्रसाद प्रभै निहाल। बिलावल महला पंजवा, मूलाल नस्यों प्रीत बनी रहाओ, तोरी ना टूटै शोरी ना छूटै, ऐसी माधो खिंच तनी, दिन सरैन मन माहे बस्त है, तू कर कृपा प्रभ अपनी। बल बल जाऊं श्याम सुंदर कहो, अकथ कथा जा की बात सुनी, जन नानक दासन दास कहियत है, मोए करो कृपा ठाकरे अपनी। बिलावल महला पंजवा, हर के चरण जप जाओ कुर्बान, गुर मेरा पार ब्रह्म परमेसर, ताका हृदय तार मन ध्यान रहाओ। सिमर सिमर सिमर सुखदाता, जाका किया सगल जहान, रसनारवो एक नारायण, साची दरगह पावो मान। साधु संग प्राप्त जा कहो, तिन ही पाया हो निदान, गावो गुण कीर्तन नित स्वामी, कर कृपा नानक दी जयदान। बिलावल महला पंजवा, राख लिए सतगुर की शरण, जय जयकार हुआ जग अंतर, पार ब्रह्म मेरो तारण तरण रहाओ। विश्वंपर पूर्ण सुखदाता, सगल समग्री पोखन परन, थान थनंतर सर्व निरंतर, बल बल जाई हर के चरण। जी जुगत वस मेरे स्वामी, सर्व सिद्ध तुम कारण करन, आद जुगाद प्रभ रखदा आया, हर सिमरत नानक नहीं डरन। राग बिलावल महला पंजवा, दोपदे कर अठवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा, ई गै निर्गुण यू गै सरगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा रहाओ। नगर मैं आप

प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक ते राओ करत खिन पीतर, प्रमेरो अनाथ को नाथ। जल तगन मैं जन आप उधारे, करे अपने दे राखे हाथ। सीतर सुख पायो मन तृप्ते, हर सिमरतो श्रम सगले लाथ। निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो। उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभर तुमारो, हमरे दुख हृदय मत तारो। जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो। जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपुरे पूरी सब राखी। पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ। मन तन रव रहया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया। सांत सहजया आनंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरै हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे। करो नगरो पतो धारनो, राख स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे। औदो बिहावत अधिक मोहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे। केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला।

तन तन कलातो सब देख अब महन्ना, बिन नावे किछ संग ना जाना रहाओ, कीचे रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पस मै टेरी, खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल, गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे, दूजी दुरमत दर्द ना जाए, छूटे गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला, नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया, सूकर सुवान गर्दप मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला, गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाई है, बंधन बांध्या आई जाई है, गुर सेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ, साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सीजै दरस होए, सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै, हुक्म पछाण सच्चै दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास, रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अर्पै है ओ जिसका, ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए, बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जग कौआ, मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठे मान, बिन नामै पाज रहग निदान, सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै, बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ, गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो, साचै नाय वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै, दर कर महल ठौर कैसे पावै, हर जियो सेविय अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै, आपै आप मिलै चुकै अभिमानै, गुरमुख नाम सदा सदा वखानै, सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति जो समाई, सतगुर मिलै वड्डी वड्याई, दो काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मानिया करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां कर ग्यारवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपव ज्योति ज्योत मिलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ, एक गिरो दस द्वार हैं जाके, अहन सो तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया, जम जागाती नेण ना आवै, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावै सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मंत्र बतै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया, एक दृष्ट सब सम कर जान है, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया, राम नाम है जोत सबाई,
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਓ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਊਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਭਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਈਆ। ਗੁਰਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤ ਲਾ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਈਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਕਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਹੀਆ। ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਲਾਲ ਜੇ ਵਿਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤਈਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ, ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਪਈਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਥ ਕਥਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਦਿਖਈਆ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਉਸਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਹਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ, ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਈਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਧਾਰ ਚੋਵੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਮਨ ਅਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਕਰ ਉਸਰਈਆ। ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੈ ਪਈਆ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਖਿਲਈਆ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕੇ ਆਪੇ ਆਪ ਰਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਪਸਮ ਦਰੜਈਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ। ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਰਹਾਓ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਕਈਆ। ਧਾਵਤ ਤਾਏ ਤਦੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਤੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਜੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਵਾ, ਮਨ ਦੈ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਮਨ ਕਰਈਆ।
पर पवन करै बुझै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे, मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया। तृप्त संतोख मन शांत ना आवै, मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेर जो सेतज उत्पुज, सब वर्ण रूप जी जंतो पैया। साधु शरण भरै सो उभरै, खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया। नामा जय देव कबीर त्रिलोचन, औ जात रविदास चमयार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत, धन धन्ना जट सहन मिलया हरदैया। संत जना की हर पैज रखाई, भगत वछल अंगीकार करैया। नानक शरण परे जग जीवन, हर हर कृपा तार रखैया। बिलावल महला चौथा, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। सुन गुरबचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हौ आकल बिकल पई गुर देखे। हौ लोट पोट होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिराओ सब दे दिसंतर। मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया, मन तन काट देओ गुरे आगे। जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया, कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा। हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया, मस्त काट देओ चरणा तल। जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया, चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै। गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वछल उवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। खिमा सिंगार करे प्रभ खुशिया, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आग्या जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनया, मन मोती चूर बड गहन गहनैया। हर हर सरदा सेज विशाई, प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश की जै, सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया। कियो सिंगार मिलन कह ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करै तेरे वस पैया। दयाधीन करो रख ले वो, नानक हर गुर शरण समैया। बिलावल महला चौथा, मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का। खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया, गुर देखे सरदा मन पूरी। जो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ, रोम रोम मंतन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया, वैदिक नाटक देख भुलाने। मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया। हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमल अमली मर गैया। जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिन अवर ना पावै। बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै। हौ तिस विटो बल बल घूम गैया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले। जा सत सत सतगुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकर, महल ना पावै मनमुख परमैया। गुर गुर कर तो शरण जे आवै, प्रभ आए मिलै खिन ढील ना पैया। कर कर क्रिया चार वधाए, मन पाखंड कर्म कपट लोबैया। बेसवै का बेसवा कै घर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकर कृपा तारी। बहां पकर नानक कढ लैया।
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਘਰ ਬਾਰਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ, ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਤਜ ਆਨ ਸਰਨ ਗਹੀ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲਿਆ ਧਾਰ, ਹਉ ਜਾਉ ਸਤ ਬਰਿਹਾਰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ ਤਜ ਆਨ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਕਹਿਣ ਮਲ ਪਾਪ ਕਲ ਮਲ ਦਹਿਨ, ਚੜ ਨਾਵ ਸੰਤ ਉਧਾਰ, ਪੈ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ, ਮਨ ਡੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਤਜ ਗਏ ਪਾਪ ਬਿਕਾਰ, ਹਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੀਐ ਬਿਸਮਾਦ, ਚਖ ਅਨੰਦ ਪੂਰਨ ਸਾਧ, ਨਹਿ ਡੋਲੀਐ ਇਤਯੂਤ, ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਹਰ ਹਰ ਚੀਤ, ਤੇ ਨਾਹੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਨਿਤ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ, ਤੇ ਜਮਨਾ ਪੇਖੈ ਨੈਨ, ਸੁਨ ਮੋਹੇ ਅਨਹਤ ਬੈਨ, ਹਰ ਸਰਨ ਸੂਰ ਗੋਪਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ।

एकमेक अंकार निराला, अमरा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख दिखावे तिसको बल जाई, गुरप्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीसै, गुर के शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जम दर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जम काल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पहु पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवरना दूजा सिरजन हारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहा भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथे उपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी पेदा, अष्ट दशा खड़की ने उपाए, सो बुझे जिस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंच भूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंग रात एक मरतूर, एक दर कर साचै देख दूर, झूठे को नाही पत नाओ, कबो न सूचा कला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमै मुक्त न होए, तव छूटै जा खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत रड़ाए, खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, शब्दे भेदे तव पद पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साच समावै, सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सच नी साने ठाक ना पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमें मनुआ रहया लिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए, नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महाबलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगा दी है पी होग, ओह परंपर करण है जोग, दसमी नामदान इशनान, अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागै भ्रम पौ पागै, बिलम न टूट सका चै तागै, ज्यो तागा जग एवै जानो, अस्त्र चा अस्त्र जी साच रंग माणो, एकादशी करदै वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै ब्रत आत्म चीनै, पाखंड राज तत् नहीं बीनै, निर्मल निराहार नेह केवल, सूचे साचे ना लागै मल, जै देखो तहे को एका, होर जियो पाए वेको वेका, फलो हर किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुंद्रा मन अवदूता, अहनस जागै कवै ना सूता, जागत जाग रह लिवलाए, गुर परचै तस खाल ना खाए, अतीत भय मारे बैराई, प्रणवत नानक तैं लिवलाई, द्वादशी दया दान कर जाणै, बाहर जातो भीतर आणै, बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम,
तीन पवन मैं एको जाना सब सुत संयम साच पछाण है। तेर सतरवर समुंद किनार है अमृत मूल शिखर लिवतार है। डर डर मरै ना बूढ़ कोए निडर बूढ़ मरै पत खोए। डर मैं घर घर मैं डर जाना तख्त निवास सच मन पाण है। चौदस चौथे थावै लै पावै राजस तामस सतकाल समावै। ससियर कै कर सूर समावै जो जोत की कीमत पावै। चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए। अमावस्या चंद गुप्त गहनार बुझो ज्ञानी शब्द विचार। ससियर गगन जोत त्यो लोई कर कर वेखै करता सोई। गुरते दिसै सो तिसी माहे मनमुख पूले आवै जाए। घर दर थाप थिरथान सुहावै आप पछाणै जां सतगुर पावै। जह आसा तह बिनस बिनासा फूटै खप्पर दुबदा मनसा। ममता जाल ते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बिलावल महला तीजा वार सत कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आदित वार आद पुरख है सोई आपे वरतै वरना कोई। ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सो होई। नाम रते सदा सुख होई गुरमुख विरला बूझै कोई। हृदय जपनी जपो गुणतासा हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी। जन पग लग त्यावो होए दसन दासा रहाओ। सोमवार सच रहा समाए तिसकी कीमत कही ना जाए। आख आख रहे सब लिवलाए जिस देवत पल्ले पाए। अगमा गोचर लखिया ना जाए गुर कै सबधार रहा समाए। मंगल माया मोह उपाया आपे सिर सिर तंदे लाया। आप बुझाए सोई बूझे गुर कै शब्द दर कर सूझे। प्रेम भगत करे लिवलाए हम मैं ममता शब्द जलाए। बुद्ध वारे आपे बुद्ध सार गुरम करनी शब्द विचार। नाम रते मन निर्मल होए हर गुण गावे हम मैं मल खोए। दर सच्चे सद शोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए। लाहा नाम पाए गुरुद्वार आपे देवै देवनहार। जो देवै तिसको बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए। नानक नाम रखो उरतार देवनहारे कौ जयकार। वीरवार वीर परम पुलाए प्रेत पूत सब दूजे लाए। आप उपाय कर वेखै वेका सबना करते तेरी टेका। जी जंत तेरी शरणाई सो मिले जिस लह मिलाई। शुक्रवार प्रवरया समाई आप यो पाए सब कीमत पाई। गुरमुख होवै सो करै विचार सच संयम करनी है कार। वर्त नेम नेता प्रत पूजा बिन बूझे सब पाओ है दूजा। शनिश्चरवार सौन शास्त्र विचार हम मैं मेरा परमै संसार। मनमुख अंधा दूजे पाए जमदर बाधा चोटा खाए। गुर प्रसादी सदा सुख पाए सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवै सेवट पागी हम मैं मार सच लिवलागी। तेरा रंगराते सह सुभाए तू सुखदाता लह मिलाए। एक स्ते दूजा नहीं कोए गुरमुख बूझै सो जी होए। पंद्रह थित्ती तैं सत वार महारुति आवै वार वार। दिन सरैण तवै संसार आवा गौण किया करतार। निहचल साच रहा कल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार। बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे सृठ साजे। जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे। आवै जाए मरै आ भागे।
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਪਰਪੰਚ ਚੁਕੈ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਰਹਾਉ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਸਭ ਵੇਖੈ, ਕੋਈ ਨ ਮਿਟੈ ਤੇਰੇ ਲਿਖੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਹਾਏ, ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨ ਬੂਜੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਜੈ। ਏਕ ਸਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੂਆ, ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨ ਬੀਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦਰ ਨੀਸਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਪਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਤਿਸਨੋਂ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਸਰਨਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕੌਣ ਡਰੈ ਡਰ ਕਿਸਕਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਸਰੀਰ, ਸਭ ਚੀਨ ਫਿਰ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪੀਰ। ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਹਰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮਨ ਰੋਸ ਕੀਜੈ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਏ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਚਲੋ ਸਦਾ ਸਚ ਸਮਾਹੇ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਚੇ। ਮਨਮੁਖ ਮਰੈ ਮਰ ਬਿਗਤੀ ਜਾਹੇ, ਏਕ ਨ ਚੇਤੈ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਹੇ। ਅਚੇਤ ਪਿੰਡੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਪਾਰ। ਆਪੋ ਪਾਇਓ ਪਾਵਨ ਹਾਰ, ਆਪੇ ਕੀਤੁਨ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੈ ਭੇਖ ਤਾਰੀ, ਭਵ ਭਵ ਪਰਮੈ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ। ਐਥੈ ਸੁਖ ਨਾ ਆਗੈ ਹੋਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਖੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਕਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮਹਿਲ ਪਾਏ। ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਇਹ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਦੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੈ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਇਕਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਮਤ ਦੱਖਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁੰਦਨ ਵੇਲੜੀਆ, ਗੋਇਲ ਆਈ ਰਾਮ। ਮਟਕੀ ਡਾਰ ਧਰੀ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ। ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੀ ਗੋਇਲ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗਾਰੀਆ। ਕਰ ਜੋੜ ਗੁਰ ਪੈ ਕਰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮਿਲੋ ਸੱਚ ਪਿਆਰੀਆ। ਧਨ ਪਾਏ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਮੁੰਦਨ ਵੇਲ ਸੁੰਦਰ, ਦੇਖ ਪਿਰ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਸੱਚ ਨਵੇਲੜੀਏ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ, ਆਓ ਨਾ ਜਾਓ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਨਾਲੀ ਰਾਮ। ਨਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਦਾਸੀ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਰ ਕੀ ਭਾਵੈ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਕਥ ਕਥੀਐ, ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਰਾਮ ਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਾਲ ਰਸੀਆ, ਰਵੈ ਸੱਚ ਪਿਆਰੀਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆ ਦਾਨ ਕੀਆ, ਨਾਨਕਾ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਮੋਹਿਆੜੀ ਪਿਰ ਸੰਗ ਸੂਤੀ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਏ ਚੱਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗੂਤੀ ਰਾਮ। ਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗੂਤੀ ਹਰ ਸੰਗ ਸੂਤੀ, ਸੰਗ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ। ਇੱਕ ਪਾਏ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਮੇਲੀਆ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਘੜੀ ਨਾ ਚਸਾ ਵਿਸਰੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਿਰੰਜਨੋ। ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਦੀਪਕ, ਨਾਨਕਾ ਪਉ ਭੰਜਨੋ। ਜੋਤ ਸਬਾਈੜੀਏ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਰੇ ਰਾਮ। ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰੇ ਰਾਮ, ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰਿਆ ਪਾਰ ਸਾਚਾ, ਆਪ ਮਾਰ ਮਿਲਾਈਐ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਜਲਉ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਲ ਚੁਕਾਈਐ। ਦਰ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਭਾਣੈ, ਤਾਰ ਤਾਰ ਨਹਾਰਿਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਧਾਰਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਣਾ ਸੱਚ ਵਿਗਾਸੀ ਰਾਮ। ਮੋਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭਵ ਨਾਸੀ ਰਾਮ।
अवगतो हरनाथ नाथ है तिसै पावै सोथी है, कृपाल सदा दयाल दाता। जिया अंदर तू जी है, मैं अवर ज्ञान न ध्यान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, पेख पवनी हठ ना जाना ना।

मोहे मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सर, मोहे चात्रक तुम बूंद तृप्तो मुख पर, मुख पर हरे प्यास मेरी जी हिया प्राण पते, लाडले लाड लड़ाए सामे मिल हमारी होए गते, चीत चितवो मिटा धारे ज्यों आस चकवी दिन चर, नानक पयम पै प्रे संग मेली मछली नीर ना विसर। तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा, सोहे बंक द्वार सगला बनहरा, हर हरा स्वामी सुखैगामी अंत मंगल रसकणा, नवल नवतन नाहो बाला कवन रसना गुणपणा, मेरी सेज सोही देख मोही सगर सहसा दुखरा, नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा। बिलावल महला पंजवां शांत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक, सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्ब सुखा निद पियो, सुख सागर प्रपेटे है नानक सुखी होत एहो जियो, शांत सुख सागर प्रपाई है जब होवे।

दुह चारण रसना राम, प्रभ भक्त वछलने सेवही काया काक ग्रसना राम। ब्रह्मो ही दुख न जानही कोड जोनी बसना राम, नानक बिन हर अवर जे चाहना बिष्टाक्रम पसमा राम। लाए बिरो भगवंत संगे होय मिल बैरागन राम, चंदन चीर सुगंध रसा हमे बिखत्या गन राम। ई तूत ने डोलिया हर सेवा जगन राम, नानक जन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम। बिलावल महला पंजवा हर खोजो वड भागियो मिल साधु संगे राम, गुण गोविंद सद गाइए पार ब्रह्म कै रंगे राम। सो प्रभ सद ही सेविए पाइए फल मंगे राम, नानक प्रभ शरणागति जप अंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किश दीना राम। वड भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम, बाहा पकड़ो तम ते काढ़िया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम, क्या गुण तेरे कह सकौ प्रभ अंतर जामी राम। सिमर सिमर नारायण पै पार ग्रामी राम, गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम। नानक उदरे जप हरे सबू का स्वामी राम, रस पिन अड़े अपने राम संगे से लोइन नीके राम। प्रपेक्त इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम, अमृत रस हर पाया बिखिया रस पीके राम। नानक जल जलै समाया ज्योति ज्योत मी के राम, बिलावल की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गाव्या करनाद बिलावल राग, उपदेश गुरु सुन मन्या तुरमस्तक पूरा पाग। सब दिन सरैन गुण उचरै हर हर हर उर लिव लाग, सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग। अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग, जन नानक जीवै देख हार एक निमख कड़ी मुख लाग। महला तीजा बिलावल तब ही कीजिए जब मुख होवै नाम, राग नाद शब्द सोहने जान लागै सहि त्यान। राग नाद छोड़ हर सेवियै तां दरगै पाइयै मान, नानक गुरमुख ब्रह्म विचारी चूकै मन अभमान। पौड़ी तू हर प्रभ आप या गम है सब तो देव पाया, तू आपे वरदा सब जग सवाया। तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया, हर त्यावो भगतो दिन सरात अंतले छाया। जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया, श्लोक महला तीजा। दूजे पाए बिलावल ना हो वई मन मुख थाए ना पाए, पाखंड भगत ना हो वई पार ब्रह्म ना पाया जाए। मन अठ कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए, नानक गुरमुख आप बिचारी है विचों आप गवाए। आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए। जमन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए, महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक सो लिवलाए। जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाए, सदा बिलावल आनंद है जे चले सतगुर पाए। सतसंगति बह पाओ करो सदा हर के गुण गाए। नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए, पौड़ी सबना जिया विच हर आप सो भगतां का मित हर। सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद कर, हर भगतां का मेली सरबत सो निसल जन टंग तार। हर सब ना का है खसम सो भगत जन चित कर, तुद अपड़ कोय ना सकै सब चख चख पवै चाड़। श्लोक महला।

ज्योति ज्योत में लाए इस जुग में, विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदै चित लाए। नानक जिन को नजर करे हर सच्चा, से नाम रहे लिवलाए। महला तीजा, सतगुर की सेवना कीतिया, शब्द ना लगो पाओ, हम मैं रोक मावना अदीर्घ बहु सुआओ। मन हठ कर्म कमाव दे, फिर जोनी पाए, गुरमुख जन्म सफल है, जिसनो आपे लय मिलाए। नानक नदरी नदर करे, ता नाम तन पल्लै पाए पौड़ी। सब वड्याइयां हर नाम विच, हर गुरमुख त्याई है, जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है। गोहज गल जी की कीचै, सतगुरु पास ता सर्व सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे, सब भुख लै जाई है, जिस पूर्व होवै लिखिया, सो हर गुण गाई है। सलोक महला तीजा, सतगुर ते खाली को नहीं, मेरे प्रभ मेल मिलाए। सतगुर का दर्शन सफल है, जिहा को इच्छे तिहा फल पाए। गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाए, हर रस पी संतोख होवा, सच वस्या मन आए। सच ते आए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए, सचो दै दस पसरिया, गुर कै सह सुवाए। नानक जिन अंदर सच है, से जन छपै ना किसै देश पाए। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई है, जा को नदर करे, मानस ते देवते पए, सच्ची भगत जिस दे। हाँ मैं मार मिलायन, गुर कै शब्द सोचे, नानक सह जे मिल रहे, नाम वड्याई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वड्याई, हर करतै आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन, ओना अंदर हिरदै पाई। निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन, ओना प्राया भला ना सुखाई। क्या होवै किसी दी, क्या होवै किसी की, चख मारी जा सच्चे स्यों बने आई। जे गल करते पावै, सा नित नित चढ़ै सवाई, सब चख चख मरै लोकाई। सलोक महला तीजा, त्रिग एह आसा दूजे भाव की, जो मोहे माया चित लाए। हर सुख पल्लर त्यागिया, नाम विसार दुख पाए। मनमुख अज्ञानी अंधले, जन्म मरै फिरे आवै जाए। कार्य सिद्ध न होवनी, अंत गया पछताए। जिस कर्म होवै तिस सतगुर मिलै, सो हर हर नाम ते आए। नाम रते जन सदा सुख पाए, न जन नानक तन बल जाए। महला तीजा, आसा मनसा जग मोहनी, जिन मोया संसार, सब को जम के चीरे विच है, जेता सब आकार। हुक्मी ही जम लगदा, सोबरै जिस बख्शै करतार। नानक गुर प्रसादी हो मंतांतर, जा छोड़ै हंकार। आसा मनसा मारे निरास, होए गुर शब्दी विचार पौड़ी। जिथे जाइए जगत मैं, तिथे हर साई, अगै सब आपे वरतदा हर सच्चा न्याई। कूड़ यारा के मोह फिटकी, सच भगत वड्याई। सच साहेब सच्चा न्याओ है, सिर निंदक शाई। जन नानक साचा राधिया, गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा, पूरे भाग सतगुर पाई है, जे हर प्रभस करे, ओ पावा सिरे ओ पाओ है, ना प्राप्त होए। अंदर शीतल सांत है, हृदय सदा सुख होए। अमृत खाना पहनना, नानक नाए वड्याई होए। महला तीजा, ए मन गुर की सिख सुन, पाए गुणी निधान। सुखदाता तेरा मन वसै, हमें जाय मान। नानक नदरी पाई है, अमृत गुणी निधान पौड़ी। जितने पात सहा सहा, राजे खान उमराव सिकदार है। तितने सब हर के किए, जो किश हर करावे सो ओए करे। सब हर के अर्थी ए, सो वैसा हर सबना का, प्रभ सतगुर कै वल है। तिन सब वर्ण चारे खानी, सब सृष्ट गोले कर।
ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਕਉ ਦੀਏ। ਹਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸੰਤੋ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਤ ਸਮਾਰ ਕਢੀਏ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਆਪ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਦੁੱਖ ਵਰਤੈ ਦੁੱਖ ਆਗੈ। ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੰਪੋ ਪਾਗੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰ ਚੁਕਾਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਰੈ ਗਵਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰਤਾਰ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਜਾਈ। ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੇ, ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਨਿਤਮਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸੂਤੇ ਕਬੋ ਨਾ ਜਾਗੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਨਾਮ ਨਾਚੇ

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौपदे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर तिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर कहूं की जय साने फल आस सब वृथी जाई रहाओ। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश नाम वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितए कम आई। यह आस पर मित्री भाव दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ता आगे अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे

जो तुद उपकरै दुख सुखासा तिसका परवासा, क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जप, तने अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो, एहो छूटन का साचा परवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरतो सदा होए आनंद, सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा मैं सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लो हर तना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो, ओ उत्तम संत भयो बड बडना। ते जन की वडियाई हर आ वधाई, ओ कटै ना किसै की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावै मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुड़ना। जन नानक हर दानिक दीजै, नित बसै हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पात साह उमराव, सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नेह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि पज सदा दीबान, जो हर महल पावै गुरबचनी। तिस जे वड़े अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसै मन मेरे सब बिनस जाहे। जो रंग कुसुंभ कचान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे। जित हर दरगह पावै तू मान, ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान, ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपूरे की बेअंत वडाई, गुरप्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मैं भया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करना जोग, गुर परमेश्वर है पी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाईए पाई, गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, ज्योत पावे सो प्रवान, रहाओ गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर उपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दे दे जापै, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देओ अलाखा पेओ, सर पूचरण गुर सेओ, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दै ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोइथ तारे पवपार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मैं गुरमंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाईए वडभागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर का शब्द ना मेटै कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सबरे उसमाए, संत जना मिन बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम, रहाओ राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कर्याहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिवलाए, राम राम जप निर्मल पै, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे, सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास, गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संगते मार बेदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल सिठ के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, रहाओ

मोहे निर्गुण गुण किशु नाहे, सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड महला।

0: क्रोध स्तन ते जाए, राम रतन वसै मन आए, सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर।
1: अराग

अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला। कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा परखोतम, कट बिनसै गगन न जाए ले। मोहे बैराग पयो एहो जियो आए, कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहता हो, कर मैं किन जियो दीन रे। हर मैं तन है, तन मैं हर है, सर्ब निरंतर सोए रे। कहे कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे।

देख इस मरते कहो जे को रोवे जो रोवे सोई पत खोवे गुर प्रसाद मैं डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड टूटे तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सरचंड बोकाल एहो मुंडिया सगलो दरब खोई आवत जात नाग

पे जाहे। एक दोए मंदिर एक दोए बाट, हमको साक्षर उनको खाट। मूंड पलोस कमरबद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बुढ़द की टेक। सोन अंदली लोई बेपीर, इन मुंडिया न पज सरन कबीर। गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा और होवे। रखवारे का हुए विनाश, आगे नरक यहां भोग बिलास। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी। रहाओ सोहागन गल सो है हार, संत कौ बेख बिकसै संसार। कर सिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिर बिचारी। संत भाग हो पाछै परै, गुर प्रसादी मारो डरै। सागत की हो पिंड परायण, हम कौ दृष्ट परै त्रखडायण। हम तिसका बहु जान्या पेओ, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेओ। कहो कबीर अब बाहर परी, संसार है कै अंचल लरी। गोंड गृह शोभा जा कह रे नाहे, आवत पैया खुदे जाहे। वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागै दोख। तन सोहागन महापवीत, तपित पीसर डोलै चीत। रहाओ सोहागन कृपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती। साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जव लग प्राण तऊ लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे।

पांच नारद कै संग बिदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, ना बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जारो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै रहाओ। जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड। कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ ना पतिये पर चै साचे, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजार है सो दे, पांच पलीते कहो प्रबोद, नौ नायक की भक्त पछान, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात ना करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरदेव अतरूप बिचखन गोंड। धन गोपाल धन गुरदेव, धन अनाद भूखे कवल टहकेव, धन वे संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम अन्न कै साध रहाओ। जपिए नाम जपिए अन्न, अंबे का संग निकावन, अन्न

राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अस्मेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड। नाद प्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यों बिखई हेरै परनारी कौडा डारते हरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

कपटै भरी सिमरन द्रोपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जपद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो एक

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसै नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

का मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

जप मुकंद मस्तक निशानं, सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करै उपकार हमरा कहां करै संसार।

दास अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजा वै जे हो कूप तटा देवा वै करै निंद सब बिरथा जावै साध का निंदक कैसे।

जे हो अनक प्रसाद करावै भूमदान शोभा मंडप पावै अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजो नी हांडै निंदा कहां करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली।

बाद कोई पढ़ता सहसा करता, कोई कड़े पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, लागे तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्ब रहा भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रहा समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कमन दर कहिए। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिए। जीव त्याने मरिए रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रह, किंते न मायंत न जानिया। तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही। क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह निराशा। तव नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिए। जीवत आयो मरिए रहाओ दूजा। राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी। बाजे लोग सुने पत झोली मंगण कै ताई। पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे। गोरख सोजन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए। मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे। सिद्ध साध क्यार योगी जंगम, पीर पुरस बहु तेरे। जेतन मिला ता कीर्त आखा, ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह। ऐसे भगत मिले जन नानक, तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला, सुन मा शिंदरा नानक बोले। वसगत पंच करे नहीं डोले, ऐसी जुगत जो कौ पाले। आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे। अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। पिखिया पाए भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी, सुन मा शिंदरा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए, निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए, गुर चेले की संद मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है। पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध पेटन कौ आए। निहचो दे वड़ियाई, गुर तार तारन हारिया। देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा।
ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਓ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵੇਰਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਰ ਲਾਈਐ ਏਤ, ਤਨ ਕਰ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘੈ ਜੇਤ, ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਤਸੈ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਐਨਸ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅਥਕ, ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰ ਤਰਾਏ, ਜਿਤ ਦੀਵੈ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਰਹਾਓ। ਹੱਛੀ

रामकली महला पहला, सागर मैं बूंद, बूंद मैं सागर, कवन बुझे बिद जाना, उत्पो चलते आप कर चीना, आपे तत् पछाण, ऐसा ज्ञान बिचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ। दिन मैं रहण रैन मैं दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई। पुरख मैं नार, नार मैं पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन मैं जोत, जोत मैं मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महल

सो हर जनो हर प्रभु भावे, अहनस भगत करे दिन राती, ला छोड़ हर के गुण गावे रहाओ। धुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुर पूरे सच समाया, गुर आदि पुरख हर पाया, सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी, तह तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जय आप गया पौ भागा, गुरचरणी सेवक लागा, गुर सतगुर भरम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, आराम कली महला पहला, शादन भोजन मांगत पागै, खुदया दुष्ट जलै दुख आगै, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावै जन कोई, जोगी जुगत सहज कर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीखिया पाए सब तृप्ता सह रहाओ। पंच बैल गड्डिया देह तारी, राम कला निभै पत सारी, तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्त्र कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मैं मुंदरा हर गुर सरना, नानक राम भगत जन तरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा, कर पहला सतयुग सच कह सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई, सतयुग धर्म पैर है चार, गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वड्याई होई, जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम ना पावै कोई रहाओ। त्रेता एक कलकीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर, गुरमुख बूझै सोजी होई, अंतर नाम वसै सुख होई, द्वापर दूजै दुबदा होए, परम भुलाने जाणै दोए, द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए, कल युग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चलै माया मोह वधाए, माया मोह अत गुबार, सतगुर पेटै नाम उधार, सब युग मैं साचा एको सोई, सब मैं सच दूजा नहीं कोई, साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम वखाणै कोई, सब युग मैं नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हर नाम ते आए भगत जन सोई, नानक युग युग नाम वड्याई होई, राम कली महला चौथा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जे वडभाग होवै वडभागी, ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै, गुरमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय प्रगास होवै लिव लागै, गुरमत हर हर नाम समाणी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग होवै वड मस्तक, तिन गुरमत कड काढ लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काढ तली दिखलाया, भागहीन मनमुख नहीं लिया, तृण ओलै लाग छपाया, मस्तक भाग होवै तुर लिखिया, तां सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवेहर पावै, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल पया आनंदा, हर निकी कथा सुनाए, दुरमत मैल गई सब निकल, सतसंगत मिल बुद्ध पाए, राम जान गुरमत राम बोलाए, जो जो सुनै कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाओ। जेवड भाग होवै मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाए, हर के लोग राम जानी के, पागहीन ना सुखाए,
ज्यों ज्यों राम कहे जन उच्चे नर निंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए से हर के चोर। वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरण आए। हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मिलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जानी के तनी ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा। मिल संत जना मुख पावे रहाओ, हर के लोग राम जानी उत्तम। मिली उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की। मेरा ठाकर खुशी करावे, सेवक जन सेवै सेव।

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एह नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एह कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू, कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा पवन मैं पवन।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांग है टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर पय ने काम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊं लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा

राज रंग रूप सब कूर नाम बिना होए जासी तूर भरम भूले बाद अहंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख मैं देह बरदानी सागत इवही करत बयानी हर का नाम अमृत कल माहे एहो निदाना साधु पाए नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन ही डीठा राम कली महला पंजवा पंच शब्द तह पूर्ण नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद तेल करै संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण रजोग सुख सहज आनंद पवन साध संग बैस गुण गावै तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ ऊहा सिमरै केवल नाम बिरले पावै ओ विश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार निश्चल आसन बेसुमार दिग ना डोलै कतहू ना तावै गुर प्रसाद को

जा कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक प्रसमाद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मात

कर कर थाके वडे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे। हर हर नाम जपै जन कोए ताकि आसा पूर्ण होए। हर भगतन को नाम आधार संती जीता जन्म अपार। हर संत करे सोई प्रमाण नानक दास ता कै कुर्बान। आराम कली महला पंजवा सिंचै दर्ब देह दुख लोग तेरा काज ना अवरा जोग। कर अहंकार होए वरतै अंध जम की जेवड़ी तू आगै बंद। छाड़ विडाणी तात मूड़े इहां बसना रात मूड़े। माए माया कै माते तैं उठ चलना राच रहो तू संग सुपना रहाओ। बाल व्यवस्था बार के अंध पर जोबन लागा दुर्गंध। तृतीय व्यवस्था सिंचे माए बिरध भया छोड़ चल।

ताप कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवां कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वडियाई कीमत कहण न जाई रहाओ। सूर बीर तीरज मत पूरा सहे समा तुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दे वसै हर नाम। सगल सुख या नांद्या रोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए ना जाए डोले कत नाही जा कह नाम बसै मन माही। दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उतरै चिंद नानक कहो गुरदिया नाम संत संतन की टहलो संत का काम। राम कली महला पंजवा बीज मंत्र हर कीर्तन गाओ आगे मिली निथावे थाओ गुरपुरे की चरनी लाग जन्म जन्म का सोया जा।

जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठावर ओ कई ना सुमावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मै पेख। पूर्ण पूर रहा प्रभ एक रतन मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आ पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा। कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग्रच जिसनी बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित। काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जनो अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ आए बनयो पूर्वला भाग।

अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे। तोट न आवे अखुट भंडार नानक भगत सोहै हर द्वार। राम कली महला पंजवा रतन जिवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता। मेरे राम को भंडार खात खर्च कष्ट तोट न आवे अंत नहीं हर पारावार रहाओ। कीर्तन निर्मोल हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी। सुन समाध गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन। भगत भगत संग प्रभ गोष्ट करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया। दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास। राम कली महला पंजवा महिमा ना जाने बेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद अवतार ना जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जाने सुन सुन अवर वखाने रहाओ। संकरा नहीं जाने पेव खोज तहारे देव देविया नहीं जाने मर्म। सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केलो आप बिछोरे आपे मेल। एक परमे एक भक्ति लाए अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखे आखी। नहीं लेप तिस्पुन्ना पाप नानक का प्रभ आपे आप। राम कली महला पंजवा किशु काज न कियो जान सुरत मत नाही किश ज्ञान। जाप ताप सील नहीं धर्म किशु ना जानो कैसा कर्म। ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा अवर ना कोई। भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ। रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास बिखे ब्याद के गाव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगंत जी का दाता जिसे जनाम है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस सगला राधा है प्रभ गुणपास। नानक दास तेरे कुर्बान बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। राम कली महला पंजवा रखन हर दयाल कोट पव खंडे निमख ख्याल। सगल अराधे जंत मिलिए प्रभ गुर मिलमंत। जियन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी। कड़कड़ राता मेरा प्रभ रहाओ। ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पय आनंद। तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊचे पार सुमत सार।

पाए, बूढ़त लोहो साध संग तरै, नानक छा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवां, मन माहे जा भगवंत, गुरपुरै हो दीनो मंत, मिटे सगल पैतरास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किश कहण ना जाई, साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप, तिसको सदा मन जाप, तिसकी सेवा करनी तो सच सह सुख पावे मीत। साहेब मेरा अत भारा, खिन मैं था प्यो था पनहारा, तिस बिन अवर ना कोई, जनका राखा सोई। कर किरपा अरदास सुनी जय, अपने सेवक को दर्शन दी जय, नानक जापी जब जाप, सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा, बिरथा परवासा लोक, ठाकर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे, कार्ज तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण, चरण कमल हर शरण, मन तन हर ओही ते आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै, या मिटाए मलीजै, अंदन त्याई नाम, सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा, कारण करन करीम, सर्व प्रतपाल रहीम, अल्लै लाख्या पार, खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई, खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगनाथ जग जीवन माधो, पौ पंजन रिद माया राधो, रिखी केस गोपाल गोविंद, पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

सगले साज करत जगदीश, ठगन हार अनठगदा ठग, बिन मखर फिर उठ लागे। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परम गत होए। राम कली महला पंजवां, जो तिस पावे सो थिया, सदा सदा हर की सरनाई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखैठ गौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली महला पंजवां, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पिखत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसे अभमान, एक तिहाई है साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देहे तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवां, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाईए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होत प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में होए उधार, नानक पाव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक आरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरे सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आयाप। राग राम कली महला पंजवां, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन, एक

दुर्मत सगल बिनासै, राम भगत मन भीजै रहाओ। मन माया मैं उर्ज रहो है, बूझे न कछ ज्ञाना, कौन नाम जग जा कै सिमरै, पावै पन निर्वाना। पय दयाल कृपाल संत जानो, तब ए बात बताई, सर्व धर्म मानो ते किए, जेह प्रभ कीर्त गाई। राम नाम नर निसबासर मैं, निमक एक उर धार है, जम को त्रास मिटै, नानक तेह अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नावा, प्राणी नारायण सुध लेहे, छिन छिन औध कटै निसबासर।

पंडी हुक्म बुझै सो जोगी कहिया एक स्यों चित लाए सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए नदरी आवंदा सब किश बिनसै हर से ती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सो जी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करै ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करै जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जो जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों परम चुकाए विण वजाई किंगरी वाजै जोगी सा किंगरी वजाए कह नानक मुक्त होवै जोगी साचे रहै समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजै तिसते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर न देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै कट अंतर सच्चे सो लिव लाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड्डे पाग पाया जाई भरम ना चुकाओ सतगुर सेवाओ मन रखो इकठाई बिन नाम ऐसा पूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी में आसन बैसै गुरसबदी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई एहो शरीर सरवर है संतो इशनान करे लिव लाई नाम इशनान करै से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेतै नाही बिन नामै बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूर्त त्रै गुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटै चौथै पद लिव लाई पंडित पढ़ै पढ़वाद वखाणै तिन्ना बूझ न पाई बिखिया माते परम पुलाए उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई

मनसा मार मन सह समाणा बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हां गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नान

अवर न कर ना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए, सिर सिर धंधा लाई, तिसै सरे वो ता सुख पावो, सतगुर मेल मिलाई। अपना आप आपो पाए, अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे, तिसनो तिल ना तुमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, सेवड़ भागी जिनी एको जाता, सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप से आना आपे, कीमत कहन न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम पुलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया, सतगुर बूझ बुझाई। एक ना नामो आप पुलाए, एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो, तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा, करत पावस बरत बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा, विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो, जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै, जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रया विस्माद, मेरा प्रभ रवया सर्बथाई। रामकली महला पंजवा, अष्टपदिया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद किन्ही किया, परवृत पसारा किन्ही किया, पूजा विस्तारा किन्ही निवल।

राम कली महला पंजवां जी जंत सब पेखिया प्रभ सगल तुम्हारी धारना एहो मन हर कै नाम उदाहरना रहाओ खिन मैं थाप थापे कुदरत सब करते के कारना काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारना नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहा उहा ना हारना सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना अनक बार कोट जनी ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई हरहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुखलाई पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी त्रिपताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन्यान ना पाई नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसाच लाए तराई अपने जीता आप संभाले आप लिए लड़ लाई साई धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूर्त अजूनी संपाओ काले अंधकार दीपाई अंतरजामी जियन का दाता देख तृप त्यागाई एक अंकार निरंजन निरपाओ सब जल थल रया समाई भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवां सलोक सिखो शब्द प्यारे ओ जन मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली कृष्ण उलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन न जाई संतो चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचा दर्श समाई संतो गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त्याग आई संतो आत्म राम रव्या सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सोत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच कर्म राम नाम चितारी कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जी अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਫਲ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਣਾ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ ਤੁਮ ਸਮਰਾਥਿਆ ਕਾਥਾ ਗੋਚਰ ਰਵਿਆ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਕੀਮਤ ਕਾਉ

साची लिवै बिंदे निमाणी देह निमाणी लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया तुद बाज समर्थक होए नाही कृपा कर बनवारिया एस ना होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मुह त्रुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक हो आनंद है आनंद गुरते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावै पावै ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिरै दै दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावै कहै नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै आवहो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईऐ तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने पाईऐ हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने ना पाया चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तसै विटो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाई है ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगमा गोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण है आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत्यो पाया कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तो दे पाए एक वेख परसन आया लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुरते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली ज्यो तू चलाए हे तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए हे तिवै चल है जिन्ना मार्ग पावहे कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्यावहे जिसनो कथा सुना है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यो पावै तिवै चलावहे एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिनकै मन वसिया जिन तुरों लिखिया आया एक फिरै कनेरे करै गल्ला गली कने ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए सेज ना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सवाईया कहिंदे पवित सुनदे पवित
ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਏ। ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹੋ ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਵਜਾ।

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओढ़ तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए। कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्नम बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे। प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सर्द अडंबरो असू कतके हर प्याह जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगण त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पय मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार हम तुमते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत। नाद विनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पने। शंत हिम कर रुत मन पावती माघ फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो गृह आए हर कंत जियो। गृह लाल आए मंत आए से सुंदर सोहिया वन त्रैण त्रिपवन पय हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो। सलोक संत सहाय जी के पव जल तारनहार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार। जिन जानिया सही तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहारने हर जप उतरे तीर। शंत चरण विराजत सब उपरे मिटिया सगल क्लेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो। हर रंग राते सहज माते तिल ना मनते बिसरै ताजे आप सरनी परे चरनी सर्ब गुण जगदीश्वरै। गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदि कौआ देह जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो। राम कली महला पहला दखनी ओ अंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद

ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहजो पाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन ले मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणे इउ कर महल सियापै प्रभ नेड़ै हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो न जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनो दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम ज्योत उजाला तीन पवन मैं गुर गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एक का जाने पे ओ आपे करता आपे दे उगवै सूर असर संघारै उचो देख शब्द बीचारै ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुनै सोए ओह विधाता मन तन दे ओह विधाता मन मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार राधनंत रह रंगराता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निरमायल सिज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

आए विभूता जग जम पंथ, आई न मेटन को समरथ। आथ सैल नीच कर होए, आथ देख निवै जिस दोए। आथ होए ता मुक्त सियाना, भगत बिहुना जग बौराना। समय वरतै को सोए, जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए। जुग जुग थाप सदा निर्वैर, जन्म मरण नहीं तंदा तैर। जो दिसै सो आपे आप, आपो पाए आपे कड़ थाप। आप अगोचर तंदै लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई। कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई। विण नामै विरोध शरीर, क्यों न मिलै काटै मन पीर।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुभोए चित वसै राचे हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुले एक गंड, छे अन देखो जगहंड, तू पिशाब जे समकर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पई सिवाल। जापै आप प्रभु त्यो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए। ज्यो पावै त्यों राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जागरहां तुद पावां, जा तू मेलै तत जै समावां। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा। चोर चोर चख माटी रल जाए, काल न चांपै हर गुण गाए। पाई नमन दहर कै नाए, आपे देवै सहे सुभाए।

माई क्यों तत्तै अवगतै पावै गुरमुख लगै प्यारो आपे सुरता आपे करता कहो नानक बिचारो हुक्मे आवै हुक्मे जावै हुक्मे रहै समाई पूरे गुरते साच कमावै गत मित सबदे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियाले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारियाले कटकट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणै जी जुगत सच जाणै सोई आप मेट निराल मोहवै अंतर साच जोगी कहियै सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया एक कहो सच एका जाणै हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सबके सूजै अंतर जाणै सर्वदया नानक ता को मिलै वडाई आप पछाणै सर्व जिया साचो उपजै।

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त पाया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जमकी कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख तरती सच है साजी तिसमें उपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतो पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावे क्यों साज समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरिय सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाने गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणे गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम जाए नाम रते सच रहे।

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदर कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण, त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास। ताय अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबै न छोड़ै पास। ज्यों जल मैं कमल अलिप तो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै तिव हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत सास्त साजिया नो, पाप उन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला।

सब किलबिख कट्टन हार, नाम जपे नामो वारा दे, तिस जन कौ करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन, जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है, सो जीवो देवन हार। पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाहे, किस आख सुनाई है, गुर प्रसादी पाए, जिथो हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा, सच्ची वड़ियाई है, जिसनो बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियो न, गुरमुख किसै प्याई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, बा बाणिया कहानियां, पुत सपुत करेन, जे सतगुर भावै सो मन लैन, सेई कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र, ब्यास सुख नारद, बचन सब सृष्ट करेन, सच्चै लाए सच लगे, सदा सच सामालेन। नानक आए से प्रवान पए, जे सगले कुल तारेन। महला तीजा, गुरु जिन्ना का अंदला, सिख भी अंधे कर्म करेन, ओए पाणे चलन अपने, नित झूठो झूठ बोलेन, कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका, सगले कुल डोबेन, नानक जित ओए लाए तित लगे, ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा, जेती सिहट सब कीती, एक कूड़ को सत लायन, मनमुख वे गुती। गुरमुख सदा तिहाई है, अंदर हर प्रीति, जिनको पोतै पुन है तिन वात स्पीति। नानक नाम तिहाई है, सच सिफत सुनाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सती पाप कर सत कमाहे, गुर दीख्या कर देवन जाहे, स्त्री पुरखे खटे पाओ, पावे आवो पावे जाओ। शास्त्र वेदना माने कोए, आपो आपे पूजा होए, काजी होए कै बह न्याए, फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए, जे को पुछे ता पढ़ सुनाए, तुर्क मंत्र कन

जोगी गिरहि जटा बिभूत आगै पाछै रोवै पूत जोग न पाया जुगत गवाई कित कारण सरशाई पाई नानक काल का एहो प्रवान आपे आखण आपे जान महला पहला हिंदू कह कर हिंदू आवै सूत जनेऊ पड़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता तोता थाए न पाई मुसलमान करे वड्याई विण गुर पीरै को थाए न पाई राहो दसा

मुंद्रा पाए फिर संसार जिथे किथे सृजनहार जेते जीते ते वाटाऊ चीरी आई ढिल ना काऊ एथे जाने सो जाय सियाने होर फकर होर फकर हिंदू मुसलमान सबना का दर लेखा होए करनी बाजो तरे ना कोए सचो सच वखाने कोए नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी हर का मंदिर आखिए काया कोटगढ़ अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़ हर का मंदिर शरीर अत सोहना हर हर नाम दिड़ मन मुखे आप खोआयन माया मोह नित कड़ सबना साहब एक है पूरे भाग पाया जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला पहला ना सत दुखिया ना सत सुखिया ना सत पानी जंत फिर ना सत मुंड मुंडाई केसी ना सत पड़िया देश फिर ना सत रुखी बिरखी पत्थर आपत शावै दुख सह ना सत हस्ती बदे संगल ना सत गाई काओ चरै जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई जिसनु देत से आए मिलै नानक ता को मिलै वडाई जिस कट पीतर शब्द रवै सब कट मेरे हों सब ना अंदर जिसे खुवाई तिस कौन कह जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे भुलावै कौन जिसे भुलाई पंध सिर।

अहन से अंतरो रहते आनो ते बैरागी सत समान बोले परथरो सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाप जे सम कर रह ता नानक आखे गुर को कह छे वरतारे वरतै पूत ना संसारी ना ओ दूत निरंकार जो रह समाए काहे पीखिया मंगण जाए पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया जिथों हर जाता मानस देह गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवे खूहे क्यों संयम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरे ओस पिछे डुबदे पी तरना नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना महला पहला। नानक या खैरे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई आवन जान न सुजई भीड़ी गली फही कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है हर रवर या सब आप हर की कीमत ना पवे किश कह ना जापे गुर प्रसादी साला ही है हर भक्ति रापे सब मंत्र हरिया होया हंकार गवापे सब किश हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोवाया परसराम रोवे घर आया अजय सो रोवे पीखिया खाए ऐसी दरगह मिले सजाए रोवे राम निकाला पया सीता लखमण विछड़ गया रोवे दैसर लंक गवाए जिन सीता आंदी डौरू वाए रोवे पांडव पै मजूर जिनकै स्वामी रहत है दूर रोवे जन्मे जा खोए गया एकी कारण पापी पया रोवे शेख मसाइक पीर अंतकाल मत लागे पीड़ रोवे राजे कन पड़ाए कर कर मांगे पीखिया जाए रोवे किरपन संचय तन जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेखे लाए महला दूजा। जप तप सब किश मन्ने अवरकारा सब बाद नानक मन्या मन्या बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे गुण महे समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किश।

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वडपात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सदही वरतै नाल। महला पंजवा मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो है कोई ऐसा सज्जन लोड लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरे मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोई ना किसी वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्व तार समरथ हाँ तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस पोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंबे नाल कार्ज आप सवारयान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नजर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवाण तेण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिनु ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे ना। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सद बलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै हाँ सदबल

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुर ते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा जप

माधाना पर्वतकार नेत्र बासर माधाना पर्वतकार नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रतन निकाल्योन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत है वे खालियान जिन एवड पिंड ठिणक्योन लहणे धर ओन छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप पैसे ती मिक्योन सिखा पुत्रा कोख कै सब उम्मत वेखो जेक्योन जांस दोस्ता लहणा टिक्योन फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब विना है मानसा ज्यो पानी बूर वरे अदर गै गुरु की कुदरती नूर जित सुहाथ ना लबई तू ओ ठरूर नौ निद नाम निधान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो मन्ये चूर नेड़ै दिसै मात लोक तो सुजै दूर फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर सो टिका सो बहना सोई दीवान पिउ दादे जिवेहा पोता प्रमाण जिन बासक नेत्रै कतिया कर नेही तान जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान।

लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड्डे तुझ सा परवारिया। तन सो तेरा थान है सच तेरा पैसकारिया। नानक तू लैना तू है गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया। चारे जागे चहु जुगी पंचाण आपे होवा। आपी न आप साजियो न आपे ही थम खलोवा। आपे पट्टी कलम आप आप लिखण हारा होवा। सब उमत आवण जावणी आपे ही नवा निरोवा। तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खवै चंदोवा। उग बनाओ तै हाथ बनाओ चव चक्की कियन लोवा। जिनी गुरु ना सेवियो मन मुखा पया मोवा। दूनी चौनी करा मात सच्चे का सच्चा टोवा। चारे जागे चहु जुगी पंचायण आपे होवा। राम कली बाणी भगतां की कबीर जी ओ एक ओंकार। सतगुर प्रसाद काया कलालन लाहन मेलो। गुर का शब्द गुड़ कीन रे। तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे। कोई है रे संत सहज सुख अंतर जा को जप तप देव दलाली रे। एक मूंद पर तन मन देवो जो मद एक लाली रे रहाओ। पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म अगन तन जारी रे। मुंद्रा मदक सहे तुन लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रव ससगै न देओ रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस पेओ रे। निजर धार चवैत निर्मल एह रस मनु मारा तो रे। कह कबीर सगले मद शूशे एह महारस सचो रे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पाओ पाठी मन तारा। सुख मन नारी सहे समानी पीवे पीवन हारा। औदू मेरा मन मतवारा उन मद चढ़ा मदन रस चाखिया। त्रिभुवन पया उजियारा रहाओ। द्वेपुर जोर रसाई पाठी पियो महारस पारी। काम क्रोध किए जलेता छूट गई संसारी। प्रगट प्रकाश ज्ञान गुरगम्मत सतगुर ते सुध पाई। ता दास कबीर तास मत माता उचक न कबहू जाई। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते रख ली निहर मेरी। अब तब जब कब तुही तुही हम तो प्रसाद सुखी सद ही रहाओ। तोरे प्रोसे मगहर बसेओ मेरे तन की तपत बुझाई। पहले दर्शन मगहर पायो फुन कासी बसे आई। जैसा मगहर तैसी कासी हम एक कर जानी। हम निरतन ज्यो एहो तन पाया मरते फूट गुमानी। करै गुमान चुबै ते सूला को काढ़न कौ नाही। अजय सो चोभ कौ बिलल बिलाते नरके कोर पचाही। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो उरादे। हम काहू की कान न करते अपने गुर प्रसादे। अब तव जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पय है कोई न सके पिछानी। संता मानो दूता डानो एह कुटवारी मेरी। दिवस रैन तेरे पाओ पलोसो केस चवर कर फेरी। हम कुकर तेरे दरबार पाओ कै आगे बदन पसार रहाओ। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे होए सो रन मैं जूझै बिन दागे भग जाई। साधु होए सो भगत पछाने हर ले खजाने पाई। कोठरे मैं कोठरी परम कोठी बिचार। गुरदीनी बस्त कबीर कौ ले वो बस्त समार। कबीर दी संसार कौ लीनी जस मस्तक भाग अमृत रस जन पाया।

जेह मुख बेद गायत्री बिकसै, जेह मुख बेद गायत्री निकसै, सो क्यों ब्राह्मण बिसर करै। जां कह पाए जगत सब लागै, सो क्यों पंडित हर ना कह, काहे मेरे बामन हर ना कह। राम ना बोले पांडे दोजक परे, रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन, हठे कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे, कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं कासीक जुलहा, मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। राम हमरे राम नाम कहे उबरे, बेद भरोसे पांडे डू मरे। तरवर एक अनंत डार साखा, पोहप पत्र रस भरिया। एह अमृत की बाड़ी है रे, तिन हर पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम परगासा, गुरमुख बिरले जानी रहाओ। पावर एक पोहप रस बीदा, बारे ले उर तरिया, सोरे मदे पवन चकोरिया, आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजया, धरती जल हर सोखिया, कह कबीर हों ताका सेवक, जिने हो बिरवा देखिया। मुंद्रा मोहन दया कर चोली, पत्र का करो बिचार रे। ए खिंथा हो तन सियो अपना, नाम करो आधार रे। ऐसा जोग कमावो जोगी, जप तप संजम गुरमुख भोगी, रहाओ बुद्ध विभूत चढ़ाओ अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी, मन की किंगरी बजाई। पंच तत् लै हृदय रख, रह निराल मताड़ी, कहत कबीर सुनोरे संतो, धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, पावनिद तरन तारण चिंता मन, एक निमख नायो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जी ओ पिंड था दिया, जिसकी पाओ भक्त ने साधी रहाओ। पारतान पारतान पारती निंदा, पर अपवाद ना छूटे, आवागमन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग न टूटे। जेह कर कथा होत हर संतन, एक निमख ना कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोह माही, दया धर्म यार गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत वछर पैहारी, कहत कबीर पीर जन रखो, हर सेवा करो तुम्हारी। जेह सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार, निरपौ कै कर बजावै तूर, अनहद बजाय सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहे, रहाओ जे सिमरन नाही नरकार, मुक्त करै उतरै बो पार, नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा यावन नाहे। जे सिमरन करै तू केल, दीपक बांध धरियो बिन तेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बे काढ़ी ले मार। जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रख कंठ पर होए, सो सिमरन कर नहीं राखो तार, गुर प्रसादी उतरै पार। जेह सिमरन नाही तोहे कान, मंदर सोवै पटंबर तान, से सुखाली बिकसै जियो, सो सिमरन तू आंदन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझ पोहै नाम आए। सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास, जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइयै संजोग। जे सिमरन नाही तुझ पार, सो सिमरन राम नाम आधार, कहे कबीर जाका नहीं अंत, तिसके आगे तंत ना मंत। राम कली कर दूजा।
बाणी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंधच बंधन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नख सिख एहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत ओन मनो रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहा उल्टी ले सख्त सहारंग पैसी ले गगन मझारंग बेदी अले चक्र पयंगा पेटी अले राय नसंगा चूकी अले मोह मयासा सस कीनो सूर गिरासा जब कुंभक भरपुर लीना तह बाजे अनहद बीणा बगतै बग शब्द सुनाया सुनतै सुन मन बसाया कर करता उतर सपारंग कह कबीरा सारंग चंद सूरज दो जो स्वरूप ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार ज्योति अंतर तरिया पसार रहाओ हीरा देख हीरे करो आदेश कह कबीर निरंजना लेख दुनिया होशियार बेदार जागत मुसीयत हौरे पाई निगम होशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ नीम पयो आंब आंब पयो नीम्बा केला पाका चार नाली एर फल से बरपाका मूर्ख मुक्त गवार हर पयो खांड रेत मैं बिखरियो हस्ती चुन्यो ना जाई कह कमीर कुल जात पाता जो चीटी होए चुन खाई बाणी नाम देव जियो की राम कली कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

पानी पवन में लाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मरे, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भदान दी जय। राम नाम सर तउ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जो गोदावर जाइय, कुंभ जो केदार नहाइय, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जो तीर्थ करे, तन जो हिवाले गारे, राम नाम सर तउ न पूजै। आस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै। जथ रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारसै नाम परसै। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दादे, एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगलाए और सुख मना, तीन बसाय कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थाने क्या निशानी, तह बाजे शब्दा नाहद बाणी, तह चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै। एस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रह सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै। बीज मंत्र लै हृदय रह, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह न अलिया पख, पांचो इंद्री बस कर रख। गुर की साखी राख चीत, मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुए हारे। असर नदी का बंद है मूल, पच्छम फेर चढ़ावे सूर। अजर जर है सो निजर चर, जगंग नास्यों गोष्ट करे। चौमुख दीवा जो द्वार, पलुवंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहे, मन मान करतना मैं गुह। मस्तक पद्म द्वाले मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचे तेरा नाम। राग नट नारायण।

मेरे मानो जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख भव कीने, सब पर हर पास धरे रहाओ। हर हर नाम जप आराध सेवक पाए खरे, किल विख दोख गए सब निकर, ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख या साध नगर में, एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवे, हर के भगत हरे। तिनकी संगत देह प्रभ जाचौ, मैं मूड मुग्ध निस्तरे। कृपा कृपा धार जग जीवन, रख ले वो शरण परे। नानक जन तुमरी शरण आई, हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा, राम जप जन रामे नाम रले। राम नाम जपयो गुरबचनी, हर तारी हर कृपले रहाओ। हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिलो सलल सलले। हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले। परखोत्म हर नाम जन गायो, सब दालद दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच तातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस कमले। उनवे कहन कहन कहन हर गरजे, मन बिकसे मोर मुरले। हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो अंध भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रहाओ। उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो, हम पापी शरण रखे। तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो, हर दियो नाम मुखे। हर गुनी ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे। जो चंदन संग बसे निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखे के, बहु बार बार निमखे। अवगन आरे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे। जिनको तुम्हार रखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे। जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हरण खे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर राम रंगे। हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ। जन्म जन्म के भूल चूक, हम अब आए प्रभ शरणगे। तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हम राखो वड पापगे। तुमरी संगत हर

गुण गावै स्वामी। हाँ बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए, जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम, तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानक कहो दया प्रभ धारो, हम सेवै तुम जन पगे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी, मत गुरमत नाम बने रहाओ। हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने, किलबिख नाम किलबिख पाप नाम हर काटे, जब खेत किरसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, ज्यो जल कुंचर तंदुए बंदो, हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने। तुमरी था पाई नहीं पावै, जन नानक के प्रभ वडने। नट महला चौथा, मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रभ धारी, लग सतगुरु हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम गोचर स्वामी, सब त्यावै हर रुणने, जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने। एहो पर पंच किया प्रभ स्वामी, सब जग जीवन जुगने, ज्यो सलल सरल उठे बौ लहरी, मिल सरल सरल समणे, जो प्रभ किया सो तुम ही जाना, हम न जाही हर गहने, हम बारक कौर दुस्त धारो, हम करे प्रभु सिमरणे। तुम जल निधार मान सरोवर, जो सेवै सब फलने, जन नानक हर हर हर हर बंश है, हर देवो कर कृपणे। नट नारायण महला चौथा, पड़ताल एको अंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुर पगरे नरवाल, सब दाल दुपाई दुख दाल, हर हो नदर निहाल रहाओ। हर का गृहो रैप सवार्यो, हर रंग रंग महल बेअंत, लाल लाल हर लाल, हरे अपनी कृपा करी आप गृह आयो, हम हर की गुर की है बसिठी, हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल, हरे आवते की खबर गुर पाई, मन तन आनंदो आनंद पहे, हरे आवते सुने मेरे लाल हर लाल, जन नानक हर हर मिले पहे गलतान हाल निहाल निहाल। नट महला चौथा, मन मेर संत संगत सुभवंती, सुनै कथ कथा सुखवंती, सब किलबिख पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती रहाओ। हर कीर्त कलयुग विच यूतम, मत गुरमत कथा भजंती, जिन जन सुनी मनी है जिन जन, तिस जन कै हौ कुरबानंती, हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया, तिस जन सब पूख लहंती, नानक जन हर कथा सुन त्रिपते, जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा, कोई यान सुनावै हर की हर गाल, तिसको हौ बल बल बाल, सो हर जन है पल पाल, हर हो मेल निहाल रहाओ। हर का मार्ग गुरसंत बतायो, गुर चाल दिखाई हर चाल, अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो, निह कपट कमावो हर की हर काल, निहाल निहाल निहाल, ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए, जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल, जन नानक कहो मत हर प्रभ दीनी, हर देख निकट है दूर, निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नट नारायण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम हौ क्या जाना क्या पावै, मन प्यास बहुत दर्शावै रहाओ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जिस ऊपर रुचि आवै,
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਵੈ ਕਵਨ ਯੋਗ ਕਵਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁਨੀ ਰੀਜਾਵੈ ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਸਾਈ ਮਤ ਸਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਜਿਤ ਨਿਮਖਨਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਵੈ ਸੰਤ ਸੰਗ ਲਗੇ ਹੋ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵੈ ਦੇਖਿਓ ਅਚਰਜ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ਼ਟਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰ ਲਾਹਿਓ ਤੈ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਹਿ ਆਵੈ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ।

नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिशना भूख निवारे। पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंचभूत सबल है देही, गुर सदगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उन वै कहनु कन हारे। साकत गौ अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती, शेड़ शेड़ कड्डै विख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै पर उपकारे। संत है संत मिलै मन बिकसै, ज्यो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब बिगारे। मेरे ठाकर कै दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारे। राख राख राख प्रा मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाद बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ, काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर सरन हर प्रभ आया, शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मरण निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उतारो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंतन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम त्याई हर हर मन जपिया, हर जप माला जिनके मस्तक लिखिया, हर मिलिया हर बनवाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम ने आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहूं, हर मात पिता प्रतपाला, कर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किलबख हर जस जाला, मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल बिख काट, हर हर उर तारियो गुरपूरै, मेरा सीस की जय गुरवाट रहाओ। मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै, तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मेलो गुरपूरै, गुरबचन बिकानो हट हाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अधकाट, बिन हर नाम के बिन हर नाम को मुक्त ना पावै। बहु कंचन दीजै कटकाट, हर कीर्त गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर परम पौ पागा, लच लज पानी मटकी माट, कल युग गुरपूरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक लिखे ललाट। जन नानक रस अमृत पिया, सब लाथी भूख तिखाट, शक्का एक माली गौड़ा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरे मन टहलो हर सुख सार, अवर टहला झूठिया नित करै जम सिर मार रहाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पवजल तारिया हर संत पुरखिया पार। नित चरण सेवो साध के तज लो मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम पूले सागता, बिन गुर अंध अंधार, तुर होव ना सो होया को न मेटन हार। अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा, राम नाम कौ नमस्कार, जास जपत होवत उधार रहाओ। जा कै सिमरन मिटै तंद, जा कै सिमरन छूटै बंद, जा कै सिमरन मूर्ख चतर, जा कै सिमरन कुलै उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुचित पाप, जा कै सिमरन नहीं संताप, जा कै सिमरन रिद विगास, जा कै सिमरन कवलादास, जा कै सिमरन निद निदान, जा कै सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, कोट भगत उधार करी, हर दास दासा दीन सरन, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा महला पंजवा, ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पज पूर्ण काम रहाओ। बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत, बूजत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुख है खीर। जैसे रण में सखा प्रात, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरखै बरस मेंग, जैसे पलन सरन सेंग, गरड़ मुख नहीं सर्प त्रास।

कमलापति तन तन बन खंड बिंद्रा बना जय खेले श्री नारायणा बिन बजावे गोदन चरै नामे का स्वामी आनंद करै मेरो बाप माधो तू तन केसो सांवलियो बीठ लाए रहो कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर ले त्यो बारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम देओ तो शरणागत आई अले सबै कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी पांजन है बहु नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसा रे प्रणवै नामा पहने कामा को ठाकर को दासा रे राग मारू महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह पंगुर प्रसाद सलोक साजन तेरे चरण की होए रहा संतूर नानक शरण तुहारिया पेखो सदा हजूर शबद पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले खेमे छत्र सराए चे दिसन रथ पीड़े जिन्नी तेरा नाम ते आया तिन को सद मिले बाबा मैं कर्महीन कूड़ियार नाम ना पाया तेरा अंधा परम कूला मन मेरा रहाओ साध कीते दुख पर फोड़े पूर्व लिखे माए।

पद बन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कबै ना जानस रे, पक्ष सिवाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाओ। बस जल नित ना वस्त जल यल मेर चाचा गुन रे, चंद कमुंदनी दूरो निवसस अनपव कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तूब ना चातर रे, अपना आप तू कबो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसै जन मूर्ख आगम सास सुने, अपना आप तू कबो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचै एक हर हर चरनी रे, पूर्व लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला सलोक पतत पुनीता संख हो हे हर चरणी मलला, अड़सठ तीर्थ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग शबद। सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सुहेली, जो मैं बेदनों

गया सो जो बनो तन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक।

तौ दीवाना जानिए जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला, एहो तन सरबरया भरपूर, मनुख फिर से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा, जिस तू देहे

आए इस तन की देखो वड्याई सहजे माते अन दिन जाई एक बात अनूप सुनो नर पाई इस तन बिन कहो किने परम गत पाई भणत नानक वा कथ की कथा सुनाए सतगुर मिले ता इहो तन पाए मारू महला पहला सूर सर सोस लै सोम सर पोख लै जुगत कर मरत सो संबंध की जय मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है उड़ै न हंस न कंध छीजै मूड़े काए चे परम पुला नहीं चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ अजर गहो जार लै अमर गहो मार लै परात तद छोड़ तो प्यो पीजै मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी उड़ै न हंस न कंध छीजै भणत नानक जनो रवै जे हर मनो मन पवन स्यो।

जप हर हर नाम छड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मल लै जावै जियो माया मोह।

तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे, सब किल विख कट है हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो, हर चलद्या नाल सिखाई जियो। जिसनों कृपा करे सो त्यावै, नित हर जप जापै जप हर सुख पावै। गुरप्रसादी हर रस आवै, जप हर हर पार लंघाई जियो। रहाओ निरपो निरंकार सतनाम, जग में सृष्टि उत्तम काम। दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो, हर सेवक नेड़ न जाई जियो। जिस उपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जोगो चहो कुंट जानिया।

अपने चलता जिस हर राखै तिस कौन मारै जिस करता आप छिड़ाई जियो हवन दिन नाम लई करतारे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छिड़ाई जियो मारू महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डर पै तरत आकाश नखियत्रा सिर उपर अमर करारा पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा एका निरपौ बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूपयो पाया शल बपरीय कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगर समग्री डर ब्यापी बिंड और करण हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहै दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बेदारे मेरे ठाकर केते अगंत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरन द्वारे रहाओ बालमीक सुपचारो तरयो बद्धक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराध्यो गदपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलाद हर नाक्ष नखै बिदारे बिदर दासी सुत भयो पुनीता सगले को लियो जारे कवन परात बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजे पुजा पसारे।

अवर दिन काहू काज न लाए, सो दिन मोको दीजे प्रभ जियो, जा दिन हर जस गाए रहाओ। पुत्र कलत्र गृह देख पसारा, इसी मैं उर जाए, माया मद चाख पए उदमाते, हर हर कबो न गाए। एह बिद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए, तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ, मांगन कौ दान आए। त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरण आए, कहो नानक हर मिल पए एक, महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अहंकारा, कवन चिहन सुनि ऊपर शोहयो, मुखते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुद्दत, चलते खबर ना पायो रहाओ। सहनशील पवन यार पानी, बसदा खिमा ने प्राते, पंच तत् मिल पयो संजोगा, इन मैं कमन दुराते। जिन रच रचिया पुरख विधाता, नाले हों मैं पाई, जन्म मरण उस ही कौ है रे, ओहा आवै जाई। वर्ण चिहन नाही किछ रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजारै, तब एक है एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोहवर लोभ विकारा, बियो चीतना कालेओ, नाम रतन गुणा हर वणजे, वा लाद वखर लै चालेओ। सेवक की ओड़क निभी प्रीत, जीवत साहेब सेवयो अपना, चलते राख्यो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो, तिस्ते मुख नहीं मोरयो, सहजा नंद रखियो गृह पीतर, उठ उवाहू कौ दौरयो। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, सो घर खनी जान्यो, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथै ले मान्यो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ, सवरे हल्त पलाता, तन सेवक सफल ओह आया, जिन नानक खसम पछाता। मारू महला पंजवा, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, श्रमथा का पाए बिश्रामा, मिटकई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैर आई, सद हजूर हाजर है नाजर, कतै न पयो दूराई। सुख शीतल सरदा सा पूरी, होए संत सहाई, पावन पतत किए खिन पीतर, मैं मां कथन न जाई। निरपौ पए सगल पै खोए, गोबिंद चरण उटाई, नानक जस गावै ठाकर का, रहन दिन सलिवलाई। मारू महला पंजवा, जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबो न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ता कौ, ओआ कौ फिर ताव सिरे। अपने प्रभ कौ क्यों ना समार सरे, बैरी संग रंग रस रचिया, तिस्यों जिया राज सरे रहाओ। जा कै नाम सुने जम छोड़ै, ताकि सर न पाव सरे, काड़ दे स्याल बपरे कौ, ताकि ओ टिकाव सरे। जिसका जास सुनत पवतरी है, ता स्यो रंग ना लाव सरे, थोरी बात अल्प सुपने की, बहुर बहुर अटकाव सरे। पयो प्रसाद कृपा निध ठाकर, संत संग पत पाई, कहो नानक त्रै गुण प्रम छूटा, जौ प्र पय सहाई। मारू महला पंजवा, अंतरजामी सब जानै, तिस्ते कहां दुलारियो, हस्त पाव चरेखिन पीतर, अग्न संग लै जा रहे हो। मूड़े तै मनते राम बिसारे हो, लून खाए करे हराम खोरी, पेखत नैन बेदारे हो रहाओ। असाध रोग उपजियो तन पीतर, टरत ना काहू टारे हो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो, एहो नानक तत् विचारे हो।
ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਚੀਤ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਉ, ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਹੈ ਸੋਉ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਓਟ ਆਪੇ ਆਪ ਰਹਾਉ, ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਗਹਿਓ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜੀ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਵਿਸਾਰਿਓ ਅਗਿਆਨਥ। ਹੋਛਾ ਮਦ ਚਾਖ ਹੋਏ ਤੁਮ ਬਾਵਰ, ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਆਕਾਰਥ। ਰੇ ਨਰ ਐਸੀ ਕਰੈ ਅਯਾਨਥ, ਤਜ ਸਾਰੰਗ ਧਰ ਭ੍ਰਮ ਤੂੰ ਭੂਲਾ। ਮੋਹੇ ਲਪਟਿਓ ਦਾਸੀ ਸੰਗਸਾਨਥ ਰਹਾਓ। ਧਰਣੀ ਧਰ ਤਿਆਗ ਨੀਚ ਕੁਲ ਸੇਵੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵਥ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਗਿਆਨੀ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਕਹਾਵਤ। ਸਤ ਹੋਤਾ ਅਸਤ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਜੋ ਬਿਨਸਤ ਸੋ ਨਿਚਰ ਜਾਣਥ। ਪਰ ਕੀ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਕਰ ਪਕਰੀ, ਐਸੇ ਭੂਲ ਭੁਲਾਨਥ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਸਭ ਏਕੈ ਨਾਮ ਤਰਾਨਥ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਨੈ ਸੋ ਪਾਰ ਪਰਾਨਥ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਪਤ ਕਰਤਾ ਸੰਗ ਸੋ ਪ੍ਰਭ, ਡਹਿਕਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ। ਵਿਸਾਰ ਹਰ ਜਿਉ ਬਿਖੈ ਭੋਗੈ, ਤਪਤ ਥੰਮ ਗਲ ਲਾਏ। ਰੇ ਨਰ ਕਾਏ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਮ ਗਰਦਪ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਸੁਨਿਓ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਰਹਾਓ। ਬਿਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲੈ ਬਾਂਧੇ, ਨਿੰਦ ਪੋਟ ਸਿਰਾਏ। ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦ ਲੰਘਨਾ, ਪਾਰ ਨਾ ਪਰਨਾ ਜਾਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪਿਓ, ਨੇਤਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰਾਏ। ਸੀਸ ਉਠਾਵਨ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਿਲਈ, ਮਹਾਂਦੁੱਤਰ ਮਾਏ। ਸੂਰ ਮੁਕਤਾ ਸਸੀ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਲਪਾਏ। ਸੁਭਾਵਤ ਜੈਸੇ ਬੈਸੰਤਰ, ਅਲਿਪਤ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲਾਏ। ਜਿਸ

सगल ले शलिया, निर्भव निरंकार दयालिया, जी जंतु सगले प्रतपलिया रहाओ। एक है श्रम कर गाडी गढ़ है, एक है सुपन है दाम ना छड़ है, राज कमाए करी जिन थैली, ता कह संग न चंचल चलिया। एक है प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाब महतारी, सुत मीत प्राते गुहजी, ता कह निकट न हुई खलिया। होए अदूत बैठे लाए तारी, जोगी जति पंडित बिचारी, ग्रे मड़ी मसानी बन मैं बसते, ऊठ तिना कह लागी पलिया। काटे बंधन ठाकर जाके, हर हर नाम बस्यो जीता कै, साध संग पहे जन मुक्ते, गत पाई नानक नदर निहलिया। मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सोऊ, जाते बिरथा जात ना को, मात गर्व मैं जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साई सुवारिया। सोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब ढकी है, चरण कमल और अंतर तारो, बिखिया बनते जियो उधारो। करण पलाह मिटै बिललाटा, जप गोविंद भरम पौ फाटा, सा संग विरला को पाए, नानक ता कह बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत कर मानी, हित लायो सठ मूड अज्ञानी, काम क्रोध लो मदमाता, कौडी बदलै जन्म गवाता, अपना छोट पराया राता, माया मद मन तन संग जाता। त्रिशन ना बूझै करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगौरी आप लायो, नानक कीर्तना जाए मिटायो, पस पंखी पूत अर प्रेता, बहबे जोनी फिरत्या नेता, जै जानो तै रह न पावे, थान बिहून उठ उठ फिरतावे, मन तन बासना बहुत विस्तारा। अहमेव मूठो बेचारा, अनक दोख अर बहुत सजाई, ताकी कीमत कहन न जाई। प्रभ बिसरत नरक में पाया, तै मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिसको होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी। प्रहमत प्रहमत प्रभ सरणी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द विदारण, जिस पावे तिस ही निस्तारण। अंधकूप ते कड नहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, महा अगन ते आप उबारिया, जप तप संजम इस्ते किश नाही, आदि अंत प्रभ अगमागाही। नाम देहे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। मारू महला पंजवा, कत कौ डहकावो लोगा, मोहन दीन कृपाई ऐसी जान पाई। सरण सूरो गुरदाता, राखे आप वडाई रहाओ, भगता का आज्ञाकारी, सदा सदा सुखदाई। अपने कौ कृपा करियो, एक नाम त्याई, नानक दीन नाम मांगे द्वितीया परम चुकाई। मारू महला पंजवा, मेरा ठाकर अत पारा, मोहे सेवक बेचारा, मोहन लाल मेरा प्रीत मन प्राणा, मोको देहो दाना रहाओ। सगले मैं देखे जोई, बीजो अवर ना कोई, जियन प्रतपाल समाहे, है हुसी आहे, दया मोहे की जय देवा, नानक लागो सेवा। मारू महला पंजवा, पत ते उधारन तारन, बल बल बले बल जाइए, ऐसा कोई पेट है संत, जित हर हरे हर त्याई है। मोको कोई ना जानत, कहियत दास तुम्हारा, एहा ओटा धारा रहाओ। सर्व धारण प्रतपारण, एक बिनो दीना, तुमरी बिद तुम ही जानो, तुम जल हमीना, पूर्ण बिस्थिरन स्वामी, आहे आयो पाछे सगलो भूमंडल खंडल। प्रभ तुम ही अच्छ, अटाला खयो देवा, मोहन अलख अपारा, दान पावो संतां संग, नानक रेण दा सारा।
ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਸੰਤਾ ਗੁਰ ਜਾਨੇ ਜਨਮੰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਬੜਾਈ ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ਅਗਿਆ ਤੋਲਾ ਨਾਮੋ ਰਹਾਓ ਅਵਗਤ ਸਿਉ ਮਾਨਿਆ ਮਾਨੋ।

पूर्ण अतृप त्याग आए, सहज समाध सुभाए, हर भंडार हाथ आया, नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां, कर छेवां, दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा, मिलसा त्याग गुमान, अवर सब किश मिथिया, रसना राम राम वखान, मेरे मन करन सुन हर नाम, मिट है अग तेरे जन्म जन्म के, कवन बपरो जाम, रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै, मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाना, हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा, जिन्नी नाम विसारिया, से होत देखे खेह, पुत्र मित्र बिलास बनता, टूटते ए नेह, मेरे मन नाम नित नित लेह, जलत नाही अग्न सागर, सूख मन तन देह, रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत, पवन झूलत में है, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक, तेरे काम आवत एह। मारू महला पंजवां, पुरख

व्यापत उसन नासीत, मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत, चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाओ। कृपाल दयाल गोपाल गोविंद, जो जपै ते सीध, नवल नवतन चतर सुंदर, मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवां, चलत बैस्त सोवत जागत, गुरमंत्र हृदय चितार, चरण सरन भज संग साधु, भव सागर उतरै पार। मेरे मन नाम हृदय तार, कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों, अवर सगल विसार रहाओ। जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू अपने आप निवार, गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे, नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा, तज आप बिनसी ताप, रेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा, कर कृपा जिस दियो। मेरे मन नाम अमृत पियो, आन साध विसार होचे, अमर जुग जुग जियो रहाओ। नाम एक रस रंग नामा, नाम लागी लियो, मीत साजन सखा बंधपो, हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा, प्रतपाल माता उदर राखै, लगन देत ना सेक, सोई स्वामी इहां राखै, बूध बूझ बुद्ध बबेक, मेरे मन नाम की कर टेक, तिसे बूझ जंतु किया, प्रभ करण कारण एक रहाओ। चेत मन में तज सियाणप, छोड़ सगले पेख, सिमर हर हर सदा नानक, तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा, पतत पावन नाम जाको, अनाथ को है नाथ।

ना जाना सियाना सदा साहेब कह रंगे राता अंधन नाम वखाना। बाबा मूर्ख हां नावे बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ। मूर्ख सियाना एक है एक जो दोए नाओ मूर्खा सिर मूर्ख है जे मने नाही नाओ। गुरुद्वारे ना उपाई है बिन सतगुर पल्ले ना पाए सतगुर कै भाणे मन वसै ता अहनस रहै।

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहलिया जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त ना होई है मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्याप्या चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बुझे ओह बालक वांगी पाली है छोड़ बह तो छूटे नाही जो सिंचे तो पौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राख है तिस साधु चौर ढाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागे तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुरमत जाली है जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना नानके पूर्ण सुखदा ते तू देहता नाम समाली है मारू महला पंजवा बिरखे हेठ सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त्या दोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया पाप करेंदर सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे दोजग पाए सृजनहार है लेखा मंगे बाणिया संग न कोई पहिया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम न जातो करता तिल पीड़े जो कहानिया खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खात अंदर अगली गल न जानिया जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए।

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना सकै साचे सो लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जोत तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खानी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही सह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल विकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना, नानक नीच

ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्र सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के तेजग माही बिन गुर परमेश्वर कोई नाही गुर की सेवा मुक्त परायण अंदन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौ तावो जो इच्छो सोई फल पावो साच वखर के वा पारी विरले लै लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर लै चलो दर्शन पावो सहज महलो गुरमुख खोज लह जन पूरे इउ समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै गुर कै शब्द मन को समझावै सतगुर की बाणी सत सत कर मानो इउ आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे त्रिपवन सेवक वडो वडेरे सब तेरी कुदरत तू सिर सरदाता सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए ओए दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई जित प्रभ पावो गणत ना काई हाँ मैं मार

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पाया सिर साहा हे। संजोग वियोग मेरे प्रभ की ए, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पै निराले, गुरमुख सीर सनाहा हे। नीके साचे केवा पारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चै ओ महा हे। काची समी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोलै अपन भाण, मनमुख दूजे बोल न जाणै। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता हे। दुख में जन्मै।

बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरै सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित्र श्रीरा। बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, आवै जावै नाम नहीं बूझै, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है। पूरै सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावै मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वडियाई। सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी। साच सलाहे साच समावै, जिन गुरमुख एको जाता है। जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए। नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है। मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना। आपे गुप्त वरत सब।

त्यों तू रखै। गुरमुख नाम ते आहा है, सदा सदा तेरे गुण गावा, सच्चे साहिब तेरा मन पावा। नानक साच कह बेनंती, सच देवो सच समाहा है। मारू महला तीजा, सतगुर सेवन से वडभागी, अंदन साचे नाम लिव लागी। सदा सुखदा तारव्या घट अंतर, सब सचायो महा है। नदर करे ता गुरु मिलाए, हर का नाम मन वसाए। हर मन वसिया सदा सुखदाता, सबदे मन यो महा है। कृपा करे ता मेल मिलाए, हम मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रह करंगी, नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा, बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी, सो सच शब्द लहा है। दुख सुख करता तुर लिख पाया, दूजा भाव आ वरताया। गुरमुख होवे सो लिपतो वरतै, मनमुख का क्या विसाहा है। से मनमुख जो शब्द ना पछाणै, गुर के पै की सार न जाणै। पै बिन क्यों निरपो सच पाईए, जम काड लेगा सहा है। अफरियो जम मारिया ना जाई, गुर कै शब्दे नेड़ न आई। शब्द सुने ता दूरों भागै, मत मारे हर जियो वे प्रवाह है। हर जियो की है सब सरकारा, एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावै, हुक्मे कड़दा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा, गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवै सो सच बूझै, शब्द सचै सुख ताहा है। गुरमुख जाता करम विदाता, जुग चारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै न जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है, अगमा गोचर वे प्रवाहे। एक नाम जुग चारो धारे, सबदे नाम विसाहे। गुरमुख सांत सदा सुख पाए, गुरमुख हृदय नाम विसाए। गुरमुख होवै सो नाम बूझै, काटे दुर्म तफाहा है। गुरमुख उपजै साज समावै, ना मर जमै ना जूनी पावै। गुरमुख सदा रह रंग राते, आंदन लैंदे लाहा है। गुरमुख भगत सोहै दरबारे, सच्ची बाणी शब्द सवारे। आंदन गुण गावै दिन राती, सहज सेती कर जाहा है। सतगुर पूरा शब्द सुनाए, आंदन भगत करो लिव लाए। हर गुण गावै सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाह है। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई। नानक जन नाम सलाहे बिकसै, सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा, हर जियो सेवो अगमया पारा। तिसदा अंत न पाईए पारा वारा। गुर प्रसाद रव्या कट अंतर, तित कट मत अगाहा है। सब मैं वरतै एको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। सबना प्रतपाल करे जग जीवन, देंदा रिजक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते उपाया। हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिरसाहा पातशाह है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा, तिसद शब्द निस्तर संसारा। आपे करता कर कर वेख, देंदा सास गिरा है। कोट मध्य किसै बुझाए, गुर कै शब्द रते रंग लाए। हर साला है सदा सुखदाता, हर बख्शे भगत सलाह है। सतगुर सेवै से जन साचे, जो मर जमै काचन काचे। अगम्या गोचर वे परवाह, भगत वछलिया था है। सतगुर पूरा साच दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए।
ਗੁਣਦਾਤਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲਿਖਦਾ ਸਹਾਹੇ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਸਬਦੇ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜੰਤਰਾਪੈ ਅਣਦਨ ਸੇਵੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ਸੱਚੈ ਓ ਮਹਾਹੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਦਾ ਬਹੁ ਕਰਮ ਦਰੜਾਏ ਮਨ ਅਠ ਕਰਮ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਵਿਖਿਆ ਕਾਰਨ ਲਭ ਲੁਭ ਕਮਾਵੈ ਦੁਰਮਤ ਕਾ ਦੋ ਰਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਰਵਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ ਮਨ ਭੀਨੈ ਭਗਤ ਸਲਾਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਅਸਰ ਸੰਘਾਰਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸੇ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਏ ਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਨ ਗਾਵੈ ਨਿਰਤਨ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ ਹੈ ਜਿਨ ਆਪੇ ਮੇਲ ਵਿਛੋੜੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਭਨਾ ਸਿਰ ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਸਬਦੇ ਨਾਮ ਸਲਾਹਾ ਹੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਤੁਧਨੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਗੁਰਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਸੰਭਾਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਹਿਸਾ ਗਣਤ ਨਾ ਤਾਹਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸੱਚੈ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰੈ ਸਬਦੇ ਸੇਵਨ ਭਾਈ।